0: भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

भक्ति का मार्ग अहंकार का नहीं बल्कि समर्पण और विनम्रता का मार्ग है। वास्तव में भक्ति और नम्रता का संबंध वैसा ही है जैसा शरीर और प्राण का होता है। बिना नम्रता के भक्ति मात्र एक ढोंग बनकर रह जाती है। भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, स्वयं को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देना। नम्रता अहंकार रूपी दोष को कम कर देती है। नम्रता के आते ही मनुष्य के भीतर क्षमा, दया, संतोष और धैर्य जैसे अन्य दिव्य गुण अपने आप ही प्रवेश करने लगते हैं। एक विनम्र भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही किसी को अपने से तुच्छ या छोटा समझता है। वह हर जीव में ईश्वर का ही रूप देखता है। चिंतन के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति मार्ग में आत्मसमर्पण को सबसे अंतिम और उच्च माना गया है। बिना आत्मसमर्पण के भक्ति को अधूरा माना जाता है। ये सिर्फ आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। जब एक भक्त भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी चिंता नष्ट हो जाती है। वह सिर्फ चिंतन में डूब जाता है।

प्रभु सबके हैं और सभी के मन में हैं, परंतु हम मानव ही उनसे विमुख रहते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु की तरफ दृष्टि रखोगे तो जहां जहां देखोगे वहां भगवान हैं।

श्रोतो, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजड़ों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रमों की रूपरेखा में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम गाने सुहाने का। सुबह 9:00 सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। और इसी कार्यक्रम के बीच में श्रोताओं, सुबह 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 10:00 लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। दिन में 11:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 11:05 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीत। 11:30 पर समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। दोपहर 12:00 सैनिक भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर बहनों का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। 1:10 से लेकर 5:00 तक हमारे केंद्र से आप सुना करते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। 5:10 पर कुछ फिल्मी भजन आपको सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच। आज के इस कार्यक्रम में बात होगी रोजगार और विज्ञान जगत की। 6:05 पर किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। 7:35 पर समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां का। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम विरासत आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। देशगान आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अभिनेता राज बब्बर पर फिल्माए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। 9:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम रंगे गजल का। 10:00 सुनेगा हिमाचली लोकगीत और रात 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत।

कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमानायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सुहानी में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोताओ, आज की ये सुबह वाकई बेहद खूबसूरत और सुहानी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज की किरणें नई उम्मीदें बिखेर रही है, और उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं के चेहरे पर भी इस सुबह जैसी ही प्यारी सी मुस्कान होगी। तो श्रोताओ, आज के इस सुहाने सफर में कुछ बेहतरीन गीत तो आप सुनेंगे ही, साथ ही जानेंगे आज का सुविचार, फिर पलटेंगे इतिहास के पन्ने, और उसके बाद जानेंगे ताज़ा तरीन खबरों के बारे में, और अंत में होगी बात मौसम की। तो चलिए बिना देर किए करते हैं सुबह सुहाने की शुरुआत आज के सुविचार के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, अब वक्त है अतीत के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि आज का ये दिन इतिहास में क्यों खास है। आज 18 जून है और आज ही के दिन सन 1576 को इतिहास का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। श्रोताओ, आज का ये दिन हमें भावुक भी करता है और गर्व से भी भरता है, क्योंकि 18 जून 1858 को ही झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। देश के लिए दिए उनके इस सर्वोच्च बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। भारत को सन 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगालियों के अधीन ही था। 18 जून यानी आज ही के दिन 1940 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसीलिए 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्रोताओ, आज ही के दिन 1906 को भारत के मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने व्यंग्य कविताओं से समाज को एक नया आईना दिखाया। साथ ही आज बिहार विभूति के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की भी जयंती है। तो ये था आज के दिन का गौरवशाली इतिहास। अब इतिहास की यादों के बाद फिर से रुख करते हैं गीत संगीत की ओर।

0: आप जुड़े हुए हैं इस समय आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओं, अब हम आपके साथ साझा करेंगे आज के ताजातरीन खबरें।
1: खबर आज की।
0: खबर आज की में हम आपको बताएं श्रोताओं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के सत्रों में अपनी भागीदारी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा को लेकर सुर्खियों में रहेंगे। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामलों में अपनी स्थिति मजबूत करने जैसे विषयों पर भी नजर रहेगी। दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, जिससे मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। अफ्रीका की धरती पर पहली बार केन्या के मोबासा में चल रहे वैश्विक महासागर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। इसमें दुनिया भर के समुद्रों के संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बड़े संकल्प लिए जा रहे हैं। श्रोतो, जर्मनी के बॉन में चल रही संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता का आज समापन हो रहा है, जिसमें भविष्य के पर्यावरण लक्ष्यों को लेकर अहम फैसले सामने आ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के अपने 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर रही हैं। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। और श्रोताओं, भारतीय वायुसेना ने देश भर में नीट UG परीक्षा पेपर समय पर और सुरक्षित पहुंचाने के लिए 200 से अधिक उड़ानें संचालित की हैं। तो ये थी खबर आज की।

कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब बात करते हैं मौसम की। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देंगे हिमाचल के मौसम की। तो आज के दिन की शुरुआत आंशिक रूप से छाए हुए बादलों के साथ हुई है। पहाड़ों पर धूप और बादलों की लुका छुपी आज पूरा दिन चलती रहेगी, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। बात करें धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों की, तो यहां पर दिन में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अब बात करें कांगड़ा के निचले क्षेत्रों की, तो यहाँ पर दिन में गर्मी का एहसास बना रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। बदलते मौसम की इस सुहावनी करवट के साथ सेहत का ध्यान रखना भी श्रोताओं बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलते ही परेशानियां चुपके से दस्तक दे जाती हैं। लेकिन श्रोताओं, आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपके मनोरंजन के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं।

सुबह के 7:35 हुए हैं और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम है सुबह सुहानी। और जो दोस्त हमारे इस समय ड्राइव कर रहे हैं और कार्यक्रम सुबह सुहानी सुन रहे हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे कि रास्ते में थोड़ा सा सब्र रखिए और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखिए। कोई कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, आपको सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करना है। याद रखिए, नजरें सड़क पर और दिल महकते हुए गानों पर। दोस्तों, घड़ी की सुइयां तो हमें इशारा कर रही हैं कि अब वक्त हो चला है आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा संदेश जरूर देना चाहेंगे। जिंदगी में हर सुबह हमें एक नया मौका देती है श्रोताओं, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। कल क्या हुआ था हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन एक कोरे कागज की तरह है जिस पर हमें अपनी खुशियों की नई कहानी लिखनी है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनों से प्यार कीजिए और जहां भी रहिए खुशियां बिखेरते रहिए।

0: तो श्रोतो, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

कार्यक्रम शुभ प्रयाग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कुमार और साथियों की गाय ये माता की भेंट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम शुभ प्रयाग में। अब आपको जन्मे जय सिंह और साथियों का गाया ये लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa. आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुभ प्याग। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 21 जून सन 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा सर्वाइकल बचाव ही उपचार। इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न पूछने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद साजिद। इनसे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला से सुन सकते हैं। याद रखिए, रविवार दिनांक 21 जून सन 2026 सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर है 01892224391। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM धर्मशाला 103.4 MHz पर यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इसे सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

लगे रहो मुन्ना भाई, इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
8: We have a huge pool of talent.
9: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
10: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित

0: पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 177 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology.

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 3999 per month. Also, get amazing benefits up to Rs. 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: देख, ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका,
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर।
3: हमेशा शॉपिंग।
5: I know माँ, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: I know ना।
7: RBI कहता है।
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गाने सुहाने में। अरिजीत सिंह का गाया गीत श्रोताओं अब आपको सुनवा रही है। फिल्म का नाम है डंकी।

कहते हैं श्रोताओं कि जब किसी को किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो जाती है तो फिर मंजिल, रास्ते, दुनिया जहान सब कुछ उसी में सिमट कर रह जाता है।

0: सुबह के 8:50 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने सुहाने आकाशवाणी धर्मशाला से।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
8: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों

0: का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
3: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
2: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
3: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
2: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
3: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं और अब हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे आसपास बिखरे कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखना ही भूल जाते हैं। कभी गौर कीजिएगा, जब हम इस प्रकृति के बहुत करीब होते हैं तो हवाओं के संगीत को जब सुनते हैं तो दिन का जो जितना भी तनाव होता है वो छूमंतर हो जाता है। कुदरत हमें बिना मांगे बहुत कुछ देती है, जैसे ताज़ी हवा, खूबसूरत आसमान और छांव देने वाले ये पेड़। और सोचिए, इसी प्रकृति की गोद में जब एक छोटा सा पौधा मुस्कुराता है तो वो दुनिया को अपना सबसे खूबसूरत तोहफा देता है, और वो तोहफा है एक फूल। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की पूरी सुंदरता जैसे एक फूल में सिमट कर आ जाती है। फूल जो कांटों के बीच रहकर भी सिर्फ मुस्कुराना और खुशबू बिखेरना जानते हैं। फूल जो हमारी जिंदगी के हर जज्बात का हिस्सा है। तो आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम के सफर में हम कुदरत के इसी खूबसूरत रंग यानी फूलों के नाम अपनी महफिल सजाने वाले हैं। यानी कि बातें होंगी फूलों की और गाने भी होंगे फूलों पर आधारित। आपको हमारा साथ देना है श्रोताओं, अब से लेकर ठीक 10 बजे तक, तभी ये महफिल सज पाएगी।

कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, वैसे फूलों का और हमारा रिश्ता कितना अजीब है ना। हमारे पैदा होने से लेकर जिंदगी के हर जश्न तक ये फूल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आजकल भले ही हम अपने फोन तक ही सीमित रह गए हों, हम बहुत ही आसानी से संदेश किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि किताब के पन्नों के बीच छुपा कर रखे हुए उस सूखे गुलाब के फूल में जो जज्बात होते थे, वो अब कहाँ देखने को मिलते हैं। जो खुशबू ऐसी थी कि सालों बाद भी जब हम पन्ने पलटते थे तो वो खुशबू हमें महका जाती थी। ये सभी बातें हमें उन दिनों में ले जाती हैं जहाँ कोई ख़ास दिल के बहुत करीब हुआ करता था।

कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में फूल शीर्षक पर आप गाने सुन रहे हैं। फूलों के इस महकते हुए सफर में अब वक्त हो चला है एक ऐसे सदाबहार नगमे का, जो आज भी जब कानों में पड़ता है तो उस दौर की याद हमें आ जाती है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम गीतांजलि में इस ब्रेक के बाद फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में फूलों की खुशबू हम बिखेर रहे हैं। फूलों से मिलने वाली इस खुशी को और ताजगी को और बढ़ाते हैं। जब बात फूलों की हो तो दिल में खुशी का एहसास अपने आप हो जाता है। सुनिए फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि जारी रहेगा। 9:30 पर भी हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
3: हाँ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। 99,446 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधानों उप प्रधानों को नियम अनुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इनविटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरान खड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

0: की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हागरंग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया और देनदारियां नहीं दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारियों के प्रति एकजुट होने का आह्वान भी किया। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
1: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व प्रदेश के कई भागों में वर्षा होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज बारिश, अंधड़, बिजली गिरने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया है। देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला व मनाली सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के खजियार व डलहौजी सहित अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हालांकि लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
2: चंबा जिला की हसीन वादियों का दीदार करने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं देने का जहां दावा करता है, वहीं कई स्थानों पर स्थिति इसके विपरीत है। जिला के पर्यटन स्थल खजियार और डलहौजी में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पर्यटकों ने सरकार को पर्यटन सीजन के दृष्टिगत पहले से पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने की सलाह दी है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग पर भी पाबंदी। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, जल विद्युत परियोजनाओं में रियलिटी बढ़ाए केंद्र। हाईकोर्ट ने हटाई सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं। दैनिक जागरण की एक खबर है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना से बाहर होंगी कई महिलाएं। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में फिर बरसे बादल, एक सप्ताह में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। फूलों की बात आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। दोस्तों, किसी के चेहरे की तुलना फूलों से करना शायरी गानों और आम जिंदगी में सदियों से चला आ रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि फूल पूरी तरह से निश्चल और मासूम होते हैं। जब किसी का चेहरा बहुत भोला सच्चा और पवित्र लगता है तो उनकी तुलना खिले हुए फूलों से की जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

Like, next.

आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपके साथ फूलों की बातें कर रहे हैं और फूलों से ही जुड़े हुए गीत आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फूलों से, पौधों से एक अलग ही किस्म का लगाव होता है, बे इंतहा प्यार भी होता है। और सच कहें तो उनका स्वभाव भी फूलों की तरह ही होता है, बहुत ही संवेदनशील वे लोग होते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों में वे खुशियां ढूंढ लेते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ फूलों को पानी ही नहीं देते बल्कि उनसे बातें भी करते हैं और उनके सुख दुख को महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि एक मुरझाए हुए पौधे को भी अगर थोड़ा सा प्यार और देखभाल मिले तो वह फिर से मुस्कुरा सकते हैं। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो एक शायर ने बहुत खूब आपके लिए कहा है, जो दूसरों के चमन में फूल खिलाते हैं उनके अपने आंगन में खुशबू कभी कम नहीं होती।

दोस्तों, आज के गीतांजलि कार्यक्रम में इस महकते हुए गुलदस्ते को समेटने का और अब आपसे विदा लेने का समय होता चला है। आज का हमारा ये सफर फूलों की खुशबू और कुदरत के रंगों से भरा रहा, लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि जिंदगी में कांटे चाहे कितने भी क्यों ना हो, अपनी मुस्कुराहट को कभी कम मत होने दीजिएगा। फूलों की तरह बनिए जो खुद धूप और परेशानियाँ सहते हैं, लेकिन जो भी उनके करीब आता है उसे सिर्फ खुशबू और खुशियाँ ही देते हैं। जहाँ भी रहिए, किसी के आंगन का सबसे खूबसूरत फूल बनकर रहिए और प्यार बिखेरते रहिए। और इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप बस यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए गीतों का कारवां। आज का ये कार्यक्रम वंदना रैना के साथ, और कार्यक्रम का पहला गीत महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में फिल्म कंगन से।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: गीतों का कारवां, श्रोताओ ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ। धुन बनाई है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। फिल्म है हम किसी से कम नहीं, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

शर्मीली फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ और आरडी वर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग।

गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ लीजिए अब सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ जिसमें आवाजें हैं विशाल पठानिया और साथियों की।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई। This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags, the Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पहाड़ों के सूर्य कार्यक्रम इस समय प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत। आवाज़ है वर्षा कटोच की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं निकेश कुमार की आवाज में।

पहाड़ों के सुर हिमाचली लोकगीतों और गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, आवाज़ है अशोक कुमार की।

0: केंद्र से सुबह के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, लीजिए थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम महक पंजाब दी, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आधारित है पंजाबी गीतों और लोकगीतों पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा दोस्त जतिंदर, अगले कुछ पलों तक असि इकट्ठे करेंगे पंजाब की मिट्टी की उस खुशबू नू जो लोक गीतां सुरीलियां धुनां अते दिल नू छूण वाले नगमे विच वसदी है।

0: The perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry! Offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
6: दोस्तों, पंजाबी संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं सगो साड़ी सभ्याचार का पहचान है। इसे रंग होर गूढ़ा करते हुए पेश है अगला गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीवन भाई खेतों के सामने

0: ₹80 प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम दे अंत विच सुनदे हां अज दा बेहद खूबसूरत गीत। ए गीत साडे वल्लों एक सुरली पेंट है।

महक पंजाबी। सुरीले पंजाबी गीतों और लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओ, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से

0: सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे।

घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे

0: बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
0: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
0: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
4: बड़ी
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

दोपहर के ठीक 12 बजे हैं श्रोताओं, हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: नफरत की लाठी तोड़ो
0: कार्यक्रम में सबसे पहले ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने, और फिल्म का नाम है देश प्रेमी।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र में।

0: और कांटे इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 21 जून सन 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा सर्वाइकल बचाव ही उपचार। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद साजिद अस्थि रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। दिन रविवार दिनांक 21 जून सन 2026 और समय सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जानवर फिल्म का गीत सैनिक भाइयों अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, और इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा।

0: जालू मिलदे तो सारी दूरी रिश्ते की जी असें खत्म हो जाती। भले ही गलबात इतनी नहीं होंगी हो पर उन्होंने असं अपनी दुआओं कदी नहीं भूलते। शायद यही दोस्ती है, यही सखी सहेलियों का भैनों का प्यार है, जिथों हर पल कन्ने रहना जरूरी नहीं है पर दिल कन्ने जुड़े रहना जोड़ा से जरूरी है। जी हाँ ठीक, असा भी अपनी सखिया कन्ने अपन भैनों कन्ने रेडियो के माध्यम कन्ने दिल कन्ने जुड़े हैं, तो जालू तक असं अपनी भैनों कन्ने गलबात नहीं करी लेंदे, असा जो भी दिखा सुकून जोड़ा से बिल्कुल नहीं मिलता। तो स्वागत कर दे सारिया श्रोता सखी सहेलियों का अपन भैनों का कार्यक्रम सुनो सखी च। अज वीरवार है तो अज गल करते असा मिंजर की। इस असा थोड़ा कन्ने जी असें पहाड़ी भाषा च यानी कि स्थानीय बोलिए अपनी सखिया कन्ने गलबात करते जानकारी साझा करते। तो अज के इस कार्यक्रम में मैं थोड़े कन्ने तो सा अपनी रेडियो सखी माया सारिया श्रोता सखियां जो साड़ी तरफे तो प्यार भरी राम राम। तो गलबात करते पहले अज के दिन के बारे च। अज 18 जून है तो अजे के दिन जो अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर वर्ष असा मनुआ जो प्रकृति के कन्ने समय बिताने परिवार ते सखी सहेलियां दे कन्ने खुशियां बंडने ते महत्व जो समझाने वास्ते मनाया जांदा है। पिकनिक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि तनाव जो दूर करने ते आपसी संबंधा जो रिश्तियां जो मजबूत करने का एक बड़ा अच्छा जड़ा सा माध्यम है। अज असा ज़्यादातर अपने घरे दे कम्मे च ते अपनी होर जिम्मेदारियों च व्यस्त रहिंदे, कम करने का हटदे ते दिखा अपने फोने च व्यस्त हो जांदे। अज बार पिकनिक पर जाना उत्थू जाई करी खाना बनाना या घरे का खाना बनाई करी लेकर जाना ये सारी चीज़ा हौले हौले असा सारे का छुट्टी जा दिया हैं। तो अज अपनी जिम्मेदारी के कन्ने कन्ने जरूरत है इन्हें सारी चीज़ा जो अपने जीने च वापस लियाने दी। पिकनिक असा जो कुछ समय बिताने समय वास्ते अपनी दिनचर्या का बाहर निकाली करी प्रकृति का आनंद लेने का तनाव का दूर रहने का मौका दिंदा। खुले वातावरण च हरियाली च खरी दी प्राकृतिक जगह च समय बिताने कन्ने दिखा असा दे मने च जड़ी असें शांति मिलदी ते कन्ने परिवार ते सखी सहेलियां कन्ने प्यार ते सहयोग दी भावना जड़ी है बददी। तो अज दे दिने जो मनाने दा मुख्य उद्देश्य असा मनुआ जो प्रकृति दा सम्मान करने पर्यावरण जो स्वच्छ रखने ते मिली जुली करी खुशियां मनाने वास्ते प्रेरित करदा है। अजे दे दिन असा जो यही सिखांदा कि असा दे जीने च कम्मे दे कन्ने कन्ने मनोरंजन ते आराम जड़ा सै भी जरूरी है। तो असा जो पिकनिक मनांदे वक्त कुछ गल्ला दा ध्यान जड़ा सै भी रखना चाहिदा, जे कि प्रकृति जो नुकसान बिल्कुल नहीं पुजाना, प्लास्टिक दा समान जड़ा सै उत्थू छड्डी करी नहीं आना, कूड़ा कचरा सट्टी करी नहीं आना, सारा कूड़ा कचरा जड़ा सै इकट्ठा करके कूड़े वाले डब्बे च असा पाई सकदे, इस कन्ने गंदगी भी नहीं पौंदी, कन्ने पिकनिक वाली जगह जिहड़ी है सै भी साफ सुथरी रहिंदी, वातावरण भी ऐसा तो जिहड़ा सै साफ रहिंदा। तो स्वच्छ जीण जीने वास्ते साफ सुथरी जगह ते स्वच्छ पर्यावरण जिहड़ा सै जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना असा सभना की जिम्मेदारी है भैनों। प्रकृति का आनंद भी लिया ते कन्ने कन्ने प्रकृति जो बचाना भी उतना ही जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी जो एक स्वस्थ ते सुंदर धरती जिहड़ी है सै मिली सके। तो ये तो जानकारी हुई अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस पर। हुण असा गल करनी है गुरु अर्जुन देव दे शहीदी दिवस पर। जी हाँ अज 18 जून है ते 18 जून जो अज असा गुरु अर्जुन देव दे शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उन्हों का जन्म जड़ा से 15 अप्रैल 1563 च होया थी। वह एक महान संत कवि ते समाज सुधारक थे। उन्होंने लोगों जो प्रेम सेवा सत्य ते मानवता का संदेश दित्या। तो गुरु अर्जुन देव दी देव जी का शहीदी दिवस हर वर्ष श्रद्धा ते सम्मान कने मनाया जाता है। 18 जून यानी अजे दे दिने कई जगह उन्होंने शहादत जो याद किया जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों ते धर्मां दी रक्षा करने वास्ते कई दुख सहन किए पर सत्य ते न्याय दे रस्ते का कदी भी पिछे नहीं हटे। इस मौके पर अज गुरुद्वारियां च कीर्तन अरदास ते लंगर दा आयोजन भी किया जांदा है। लोग उन्होंने जीने का प्रेरणा लेकर ही सेवा त्याग सहनशीलता ते मानव कल्याण का संकल्प लेंदे। गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान असा जो यही सिखांदा पैणो कि सत्य धर्म और मानवता वास्ते मुश्किल परिस्थितियां च भी दृढ़ रहना चाहिदा। उन्हां दा जीवन ते शहादत सारी आने वाली पीढ़ियां वास्ते जिहड़ी असीं प्रेरणा दा स्रोत है। इस खातर गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आज जो प्रेम भाईचारे सिशुणता ते मानव सेवा का संदेश दिंदा ते असा जो उना दे आदर्शां जो अपनाई करी समाज च शांति ते सद्भाव जो जड़ा से बढ़ावा देना चाहिदा। ता गलबात असा अगे होर भी करनी है तुसा कन्ने, पर पहले सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत, पर लोक गीत का पहले संदेश।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

लोक गीत ते संदेश का बाद एक बार फिर स्वागत है सारे श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरां च। पहलों दिखा अज एक होर दिन जिहड़ा सह भी मनाया जाता है। जी हाँ, अज सतत पाक कला दिवस जिहड़ा सह भी मनाया जाता है। हर वर्ष 18 जून यानी अज के दिन जो सतत पाक कला दिवस जिहड़ा से मनाया जाता है। इस दिवस सो मनाने का उद्देश्य जिहड़ा से खाना बनाने ते खाने च ऐसी परंपराएं जो बढ़ावा देना है जिहड़ी पर्यावरण स्वास्थ्य ते समाज वास्ते जिहड़ी है लाभदायक हो। सतत पाक कला दिवस का मतलब जिहड़ा से खाना बनाने की तैयारी च प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, भोजन की बर्बादी जिहड़ी है इसको घट करना, स्थानीय ते मौसमी खाद्य पदार्थों जो जिहड़ी से प्राथमिकता देना है। इस कने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने च जिहड़ी से असा सबना जो सहायता मिलती, मदद मिलती। अज के समय च भोजन की बदली मांग जो लेकरी ते संसाधना दे अधिक इस्तेमाल जो लेकरी पर्यावरण पर जिहड़ा से इसका प्रभाव पुआ करता है। सतत पाक कला असा जो सिखाती कि घट पानी, घट ऊर्जा ते घट अवशिष्ट दे कन्ने खाना जिहड़ा से तैयार करना करी सकते असा। इस करके किसानों ते स्थानीय उत्पादकों जो भी जिहड़े से ये चीज़ें जिहड़ी से प्रोत्साहित करती है। अस भोजन जिहड़ा से दिखा व्यर्थ नहीं कर गवाना चाहिए, है ना। स्थानीय जिहड़े भी फल हैं सब्जियां तिन्हां दा उपयोग जिहड़ा से सही तरीके कन्ने करना चाहिए, कन्ने प्लास्टिक दा कम का कम जिहड़ा से प्रयोग करना चाहिए। घर च बचा हुआ जिहड़ा भी खाना हुंदा ते इसका सही तरीके दा उपयोग करना सतत जीवन शैली दा जिहड़ा से हिस्सा है। सतत पाक कला दिवस असो यही याद दिलांदा कि स्वादिष्ट भोजन दे कन्ने कन्ने पर्यावरण दी रक्षा करना भी असादी जिहड़ी से जिम्मेदारी है। यदि असा दिखाऊ भोजन दी आदतें अपनांदे हन तां आने वाली पीढ़ियां वास्ते जिहड़ा से बेहतर ते स्वस्थ दुनिया जिहड़ी से असा बनाई सकदे। मतलब अगर असा जिहड़ा से भोजन बनाने की खाने बनाने की जिहड़ी से सही तरीका अपनांदे तां आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां हन तिन्हां भी स्वस्थ रहना कने तिन्हां दी आदत जिहड़ी है सह भी खाना बनाने की सही रहनी है। तो इसके कन्ने कन्ने असां होर भी तुसां कन्ने जानकारी जिहड़ी असीं सांझा करनी है। तो ग्रामीण पैणा भी असा दियां जिहड़ी असीं दिखा हर क्षेत्र च अगे जिहड़े असीं बदलने की क्षमता रखदी हन। उन्हां च जरूरत है पूरी सुविधाएं मिलने की। अज परिवार की देखभाल के कन्ने कन्ने खेतीबाड़ी, पशु पालन ते अपने ग्राएं दे विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका जिहड़ी असीं निभाया करदे हन। इस खातर ग्रामीण महिलाएं जो भी प्राथमिकता देना जिहड़ा से बड़ा जरूरी है। दिखा सा दियां ग्राएं दियां पैणा प्यागा के लेकर ही संझा तक खूब मेहनत कर दियां, है ना। घरे दे काम भी कर दी, परिवार की देखभाल भी कर दी, ते खेतरां च भी जिहड़ा से काम कर दी हैं ते अपने परिवार की आर्थिक स्थिति जो मजबूत बनाने च अज सहयोग जिहड़ी से दिया कर दी हैं। अज ग्रामीण पैणा दे योगदान कन्ने ग्राएं ते समाज दा विकास जिहड़ा से हुआ करदा है। इस खातर ग्राएं दियां हर एक महिला जो चाहे सह कितने भी दूर दराज ग्राएं च जिहड़ियां से रहिंदियां होन उन्हां जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार ते प्रशिक्षण दे बेहतर अवसर जिहड़े से मिलने चाहिए। ते जालू महिलाएं शिक्षित ते आत्मनिर्भर बनदियां हैं तां ही सह अपने परिवार ते समाज दे विकास च जिहड़ा से होर भी योगदान दे सकदियां। अज ग्राएं दियां पैणा जो अगे बदने दे पूरे अवसर भी मिला करदे हन। स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण ते छोटे छोटे व्यवसाय दे माध्यम कन्ने अज असां दियां पैणा जिहड़ियां से आत्मनिर्भर बना करदी हैं, उन्हां दी आर्थिक स्थिति सुधरा करदी है, अपने न्याणियां जो भी खरे स्कूलां च पढ़ा दियां हैं, स्वच्छता दा भी ध्यान जिहड़ा से अज ग्राएं ग्राएं दियां पैणा रखा करदियां हैं। ते ग्राएं दियां हर एक महिला दा विकास पूरे देसे परदेसे दे विकास करने से जिहड़ा से जुड़े है। इस खातर समान अवसर ते प्राथमिकता दे करी हर एक महिला दा विकास जिहड़ा से अज जरूरी है। तां ही सही तरीके कन्ने समाज ते देसे दा विकास जिहड़ा से सही कन्ने होई सकदा ते सशक्त महिलाएं ही एक खुशहाल समाज दा निर्माण जिहड़ा से करी सकदी। तां गल्लां बड़ी होई गई आ, असां कार्यक्रम विच अगे बधना ते सुनना एक होर प्यारा तिहा लोक गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर स्वागत है सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम मिंजरंज। पहनो ग्रामीण महिलाएं असदी समाज की मजबूत नींव हैं, से परिवार की देखभाल करने के कन्ने कन्ने खेतीबाड़ी के कम पशु पालन ते घरेलू कामों च अपना महत्वपूर्ण योगदान जड़ा से दिया करते हैं। तो देखा जाए तो किसी भी समाज की असली प्रगति तरक्की ता ही संभव है जल उतु महिलाएं जड़ी हैं से शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, सशक्त हैं। असदियाँ ग्राएं दियाँ भैणा अज परिवार ते समाज के विकास च अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जी असें निभा दिया हैं। कठिन परिस्थितियों च भी यानी मुश्किल वक्त च भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण भी करा करती हैं। अज खेती के कम्मे च भी ग्राएं दियाँ भैणा का योगदान जड़ा सा सराहनीय है, पर कई बार उन्होंने कम्मे च उतनी जी असें पहचान नहीं मिली पाती। इस खातिर ग्राएं दियाँ भैणा के विकास वास्ते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ते सुरक्षा इस सारी सुविधाएं देना जड़ा से बड़ा जरूरी है। कई कई शिक्षा की वजह करने ही महिलाएं अगे बधा कर दी हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकती। पढ़ने लिखने करने ही दूर दराज कराएं दिया पैना अपने जीने का निर्णय लेने च सक्षम जड़ा से बनी सकते हैं। तो जल उन्हों का अपना कोई रोज़गार होगा तो रोज़गार ते कौशल प्रशिक्षण करने ही आर्थिक रूपे च औरतां आत्मनिर्भर बनी सकते हैं। वैसे तो अज ग्राएं ग्राएं च महिलाएं जड़ी हैं से पढ़ी लिखी करी या तो नौकरी करा करती हैं या अपना कोई भी काम जड़ा से जरूर करा करती हैं, पर दिखा दूर दराज ग्राएं च हल्ली भी कुतु महिलाएं की स्थिति जड़ा से ज़्यादा सुधार दिखने जो नहीं मिला करता है। पर समाज की तरक्की तो ता ही संभव है ना जालू हर महिला पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उस निर्णय लेने की जी असें क्षमता है। तो कन्ने कन्ने महिलाएं के विकास च उन्हां दी तरक्की च परिवार ते समाज दा सहयोग जड़ा से सह भी होना बड़ा जरूरी है। ता ही औरतां अपना हर काम खुशी कन्ने करी सकदियां। ते महिलाएं जो जालू सम्मान, प्रोत्साहन ते अपने जीने दे निर्णय लेने दी आजादी मिलदी तां उन्हां दा आत्मविश्वास जड़ा से बधदा, ग्राएं दियां भैणां सशक्त बणदियां, परिवार मजबूत बनते ते इस कन्ने समाज दा विकास जड़ा से तेजी कन्ने हुंदा। शिक्षित ते आत्मनिर्भर महिलाएं अपने बच्चों की न्याणियों की सही परवरिश करदियां ते जिन्हां घरां च औरतां खुश हैं, अगे वधा करदियां, वो परिवार भी खुशहाल हैं। इस खातर एक खुशहाल ते विकसित समाज वास्ते ग्रामीण महिलाएं दा विकास जड़ा से बेहद जरूरी है। ते ग्रामीण महिलाएं जो बराबर मौके देकरी, सम्मान ते सहयोग देकरी ही ऐसा एक मजबूत, आत्मनिर्भर ते समृद्ध समाज दा निर्माण जड़ा से करी सकदे। तो इसी बारे च अगे असा होर भी जानकारी जी असं तुहां कन्ने सांझा करनी है, होर भी जी असं गलबात करनी, पर फिर सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत। पर पहले संदेश।
2: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: decision to appoint breakaway Trinamool Congress MLA Ritabrat Banerjee as the leader of opposition in the assembly, hearing a petition filed by TMC MLA Shobhandeep Chattopadhyay challenging the rejection of his nomination and Banerjee's appointment. Justice Krishna Rao refused to stay the speaker's decision. The court directed the respondents to file their affidavits within 3 weeks, while the petitioner has been granted 2 additional weeks to file a reply. The matter will be heard next on the 28th of next month. In Jharkhand, voting for 2 Rajya Sabha seats is underway, with JMM candidate Baidyanath Ram, Congress nominee Pranav Jha and independent candidate Parimal Nathwani in the fray. Polling began at 9 this morning and will continue until 4 in the evening. Counting of votes will commence at 5 p.m., following which the results will be declared. In Mizoram, voting for the lone Rajya Sabha seat is also underway, with candidates from the ruling Zoram People's Movement and the opposition Mizo National Front locked in a direct contest. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today inaugurated the 3-day public welfare camps in New Delhi. The camp is inspired by Prime Minister Narendra Modi's 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Talking to the media after the inauguration, Ms. Gupta said the government has organized these camps at 42 locations across the national capital. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has directed all food business operators to use only food-grade and corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing activities. In an advisory, the food regulator noted that some food businesses have been found using rusted, corroded, chipped, painted, damaged or otherwise unsuitable knives and cutting tools. According to FSSAI, the use of such equipment can lead to physical, chemical and microbiological contamination of food, posing risks to consumer safety. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. The 14-point agreement, signed electronically ahead of a planned meeting in Switzerland, establishes an immediate ceasefire, commits both sides to refrain from hostile actions, and sets out a framework for addressing long-standing disputes over Iran's nuclear program and regional security issues. In FIFA World Cup 2026, Colombia began their campaign with a convincing 3-1 victory over Uzbekistan in Group K in Mexico City this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू को पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया, यानी कि सुरीला सफ़र हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम 2 सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं। हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं। कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया

किए थे और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

होती है, वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार, तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए, तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी यह सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो, स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतज़ार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुँचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय हैं। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, ज़रा खंगालिए है।

0: हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से गिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ, चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो अब आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं, वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार साहब के बोल हैं, हेमंत कुमार साहब की धुन।
1: वो शाम कुछ

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसएल वर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावा

संगीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताज़ा कर देंगे। बिल्कुल ताज़ा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहाँ ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई हैं, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज़ नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज़्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। टेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई

0: अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले

शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले

0: और अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले चार दिनों तक तेज की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने

0: देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचना का

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम दो दिल।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा को प्रदेश पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में

0: 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है।
1: प्रदेश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित
2: रिले की जाएगी।
0: सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा को प्रदेश पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद

इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी विभागों को सतर्क रहकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला किन्नौर के दूरदराज क्षेत्र रूपी में बीते सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और करीब सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लगातार 1 घंटे तक हुई तेज ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में 3 से 4 इंच तक ओलावृष्टि दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिससे सेब, चुल्ली, खुमानी, आलू और पलम सहित अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि खेतों और बागीचों में सफेद चादर बिछ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह फसल क्षति होने की स्थिति में 1 बीघा भूमि पर मिलने वाला मुआवजा लगभग 600 से 700 रुपए तक आंका जाता है, जो वास्तविक नुकसान की तुलना में

0: होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज़्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज़ पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल। हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती हैं, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज़।
1: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता। तो इस तरीके के फ्रॉड काफ़ी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फ़ोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज़ें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ ख़राब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं ख़रीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें ख़रीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़, चमचमाती चीज़ जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें।
0: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें ख़रीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने

0: चलो हम क्या करेंगे,
1: जी
0: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े, ख़राब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफ़ंड की जो नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जाँच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
0: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
1: जी।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे

0: श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ़ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से ख़रीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
1: देखिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें खराब भी आती हैं,
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: जो
0: इनको कभी पछतावा हो।
1: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीज़ें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएँ देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और मंगलवार, सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
2: जी।
3: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना ज़रूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है, बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
3: है, ये तो है,
2: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल,
2: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
3: बहुत जरूरी
2: है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं, तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं, तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है, और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें, और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे, और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
3: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है, उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है, कोई बात नहीं,

0: आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
1: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज़्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
1: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे की।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून, जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

0: तो आरती श्रीवास्तव को और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता। मीठी और

0: करते हैं आप थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा, तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहां की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन?

0: या फिर खाने भर का
1: हाँ
0: सिर्फ?
1: मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है, तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: अभी
0: पांच पेड़?
1: जी जी
0: भाई
1: जी
0: हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा
1: नहीं
0: गाने
1: नहीं
0: क्यों?
1: मैम, चलो नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम
0: अच्छा
1: ऐसा
0: अच्छा
1: कुछ नहीं।
0: जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जुबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: ओके
0: गाना।

0: सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
0: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
1: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
0: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
1: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
0: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
0: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
1: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
0: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ,
1: हाँ
0: वहाँ
1: हाँ
0: के
1: जी
0: मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा
1: गंधर्व,
0: पंडित कुमार
1: हाँ हाँ
0: गंधर्व जी,
1: जी
0: जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप घर?
1: देवास वो तो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत
1: हाँ
0: के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर, वो बरसात का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: अच्छा हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 60-62 से ही।
0: अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ
1: यानी
0: हाँ
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी
0: अच्छा,
1: सीखने के लिए। तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की,
0: अरे
1: बाल
0: वाह
1: वाले रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे,
1: अब तो
0: रिपेयरिंग
1: वो,
0: करते थे?
1: हाँ रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई
1: हाँ
0: आपने। वॉल वाले रेडियो अब
1: हाँ
0: मिलते नहीं
1: बनाते,
0: है?
1: हाँ 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे
0: अच्छा
1: चलते थे वो।
0: जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे
1: हाँ
0: ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप। और
1: हाँ मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था, उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध
1: हाँ
0: भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से
0: है
1: उधर तक
0: ना
1: नहीं लगता था।
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने
0: जी
1: उतने सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम समान, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, ढोली
0: बिल्कुल,
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती से, हम प्रसार भारती से 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लगता हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेक। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: फिर तो
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, तो हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और कल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौन ही जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे।

0: कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही था।
0: जी मनोहर लाल जी बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही है, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन हाँ। अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें बिल्कुल, आजाद बिल्कुल। रखना भी चाहिए। तो आपका तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा।
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने? मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे हैं और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है। हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपनी बेटी के लुक को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले। आम
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है? आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ, बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी

0: खाद होता
1: जी
0: है, गोबर की खाद तो सबसे
1: जी
0: अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था।
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें।
0: चक्री है ना।
1: जी।
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी जी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।
2: मैं

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24।

0: 662 मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले 3 दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के

शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम दोनों फिल्म से लिया गया ये भजन अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, हाजिर हूं मैं नर्मदा शर्मा आज का कार्यक्रम लेकर। तो सभी युवा साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं एक गीत के साथ।

0: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। और आज आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, सपना। तो सपना, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आप सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार।
0: और बताइए सपना, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ठीक है। तो चलिए युवा साथियों, और बात करेंगे। सबसे पहले हम मतलब सपना से बातें तो करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ रोजगार समाचारों के बाद। तो सपना, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप भी युवा हैं। तो SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 2026 के लिए भर्ती निकली है। पदों की संख्या है 1500, यानी 1500। शैक्षणिक योग्यता इसमें चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और आयु सीमा है 21 वर्ष से 30 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन 18 जून 2026, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 8 जुलाई 2026। चयन प्रक्रिया की बात करें तो एवं साक्षात्कार ये रहेगा। अगला पद है SSC CGL 2026 के लिए। इसमें 30 जून 2026। RRB टेक्नीशियन 2026 के लिए पदों की संख्या रहेगी 6,565। इसमें योग्यता रहेगी ITI डिप्लोमा पदानुसार। आवेदन प्रारंभ होगा 30 जून 2026 से और अंतिम तिथि रहेगी 29 जुलाई 2026। तो एक ब्रेक लेते हैं,

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
2: डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की।

0: ये भी एक वैज्ञानिक तरीका ही था। पहले हम घड़ियों में अलार्म लगाते थे, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाती है तो चीज़ें बदलती जाती हैं। आज हम मोबाइल पे अलार्म लगा के रखते हैं, है ना।
1: जी
0: और शुरुआत ही हमारी ऐसे होती है, वैज्ञानिक उपकरणों से होती है, और उसके बाद दिन भर की हमारी दिनचर्या जो है ना, सर्दियों में हमें हीटर की जरूरत

0: उसको कम से कम 2 या 3 दिन तो लग ही जाते थे। तो मुझे याद है कि जैसे मेरे पापा आर्मी में से थे, हम सब वहाँ थे, और पीछे से जैसे मेरे दादी गुजर गए तो पता चला कि ऐसे इतने दिन हो गए थे। और जब उन्होंने घर से यहाँ से तार भेजी तो वो भी कितने दिनों के बाद मिली, पापा के ऑफिस में आई, पर वहाँ से फिर निकलने को आगे और 2-3 दिन लग गए घर पहुँचने तक। तो कितना टाइम हमारा वेस्ट होता था। तो समय जो है वो बहुत हमें अब वो हो गया है कि हम बहुत जल्दी अपने काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है। तो
1: जी हाँ,
0: चलिए, हाँ बोलिए।
1: संदेश भेजने के साथ परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले लोग बैलगाड़ी और घोड़ों पर निर्भर थे, लंबी यात्राएं करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज जैसे साधनों ने यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है।
0: बिल्कुल। तो इस विषय पर सपना हम और भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, अपने श्रोताओं को, अपने युवा साथियों को एक गीत सुनवा दें।
1: जी
0: चलिए, आपको भी और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं गीत।

0: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमारे साथ हैं सपना। तो सपना से बात करते हैं, सपना के बारे में जानते हैं। सपना, बताइए आप क्या करती हैं?
4: मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील नूरपुर की हूँ। मेरा जो गांव है छोटा सा है, जिसका नाम गतला है। तो मैं फ़िलहाल की बात करूँ तो मैं धर्मशाला में ही मास्टर्स कर रही हूँ, इतिहास विभाग में।
3: अच्छा, कहाँ से कर रही हैं?
4: धर्मशाला, HPURC धर्मशाला मोहल्ला,
3: रीजनल सेंटर से कर रही हैं। ठीक जी, तो हिस्ट्री में कर रही है ना आप?
4: हाँ,
3: मास्टर्स। अच्छा, तो आपके शौक क्या हैं?
4: जैसे मुझे कविताएं सुनना, संगीत सुनना अच्छा लगता है। अच्छा। और कुकिंग वगैरह करना, घर के काम भी अच्छे लगते हैं।
3: कुकिंग तो लड़कियों का पहला शौक होता है ना?
4: जी,
3: आजकल तो वैसे लड़के भी कुछ कुछ बनाने लग पड़े हैं, सीख रहे हैं, या कईयों को, लड़कों को भी होता है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि लड़कियों, लेकिन लड़कियों के लिए तो कुकिंग ऐसा लगता है कि पार्ट एंड पार्सल है ना, कि वो तो उनको बचपन से आदत पड़ जाती है, क्योंकि माँ के साथ कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी डिश कौन सी है?
4: सबसे पसंदीदा खीर।
3: अच्छा, तो खुद की बनाई हुई पसंद आती हैं चीज़ें या मम्मी के हाथ की?
4: मम्मी की बनाई भी पसंद आती है, खुद की बनाई भी पसंद आती है
3: ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आप जैसे अपने मम्मी से दूर रह रही हैं अभी, है ना? कितना टाइम हो गया, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है
4: अभी? मेरा सेकंड सेमेस्टर।
3: सेकंड चल रहा है? अच्छा, तो अभी मतलब एक साल नहीं हुआ आपको आए हुए?
4: लगभग मतलब होने लगा एक साल, अभी एग्जाम आ गया।
3: तो घर कितने टाइम बाद जाती हैं?
4: 2 महीनों के बाद।
3: अच्छा अच्छा, तो आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों चुना?
4: क्योंकि

0: इतिहास में कहानियां होती है और वो कहानियां फैक्ट बेस्ड पर होती हैं, तो इसलिए।
1: हमारे मतलब इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। ठीक, अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और क्या शौक रखती हैं? कुछ और भी करती हैं साथ में आप, पढ़ाई के साथ साथ? जैसे खाली समय अगर आपको मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप?
0: खाली समय बस इतना ही, कुकिंग, गार्डनिंग, बस।
1: अच्छा, ठीक, चलिए। और कुछ कहना चाहती हैं? आकाशवाणी धर्मशाला में आज आप आई हैं, आपको कैसे लगते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के?
0: तो मैं ज़्यादा रेडियो मैंने कभी सुना नहीं है, पर अच्छा है बहुत। मैंने पहला मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अच्छा है।
1: अच्छा लगा
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: युवा साथियों के लिए बातचीत करके, सुन रहे होंगे आपको
0: जी
1: तो। चलिए, आप आज इधर आई, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे युवा साथी जो हैं वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ आपने बताया कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हैं,
0: जी
1: है ना? तो ये ऐसा होता है ना कि मतलब एक जिम्मेवारी भी होती है कि बच्चे समझते हैं कि हमारे माँ बाप पे ज़्यादा बर्डन ना आए तो हम पढ़ाई के साथ कुछ और भी करें
0: जी
1: जिससे हमें पैसा भी कमा सके और साथ में अपना करियर भी देख सके। जो आजकल फॉर्म भरने हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना?
0: जी
1: अपनी फीस, कहीं अब दूर रह रही हैं घर से आप, तो वहाँ रहने का खर्चा भी है। तो एक पेरेंट्स तो करते ही हैं, उनको उन्होंने तो कभी बच्चों को ये नहीं कहते हैं वो कि हमसे नहीं हो पाएगा या नहीं करेंगे, वो जैसे तैसे करना पड़े वो करते हैं। लेकिन बच्चे भी बहुत समझदार हो गए हैं, आजकल का यूथ जो है स्पेशली, तो वो भी समझता है और अपने पेरेंट्स की मदद करने में वो आगे रहते हैं। तो आप आई, बहुत अच्छा लगा। तो युवा साथियों, इसके साथ ही मुझे और सपना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:35 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, एक ही कलाकार पर आधारित कार्यक्रम में आज आपको हम सुनवाएंगे अभिनेता, एक ही अभिनेता पर फिल्माए कुछ चुनिंदा गीत रात्रि 9:15 पर। रंगी गजल में फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर। हिमाचली व लोकगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:00 को हैं अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
4: निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2033 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
3: इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यों चंद्र कुमार और यादविंदर गोमा व सांसद अनुराग शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में DBT के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
5: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स है इम्प्लॉयज और इम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा, लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू। जहां हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, पूरे इंडिया में 200 जगह के कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहां पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहां पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करे।
3: भाजपा के नव निर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के

0: के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं भोवंशी में आए थे, एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
1: राजधानी शिमला में ढली संजौली बाईपास मार्ग भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल इस मार्ग का इस्तेमाल न करने और वैकल्पिक रास्तों से जाने की अपील की है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पालकी जागरण पैदल यात्रा आज गहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गेहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
2: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है, छाई पाल की जागरण। और जो बड़ोल है जहां पर देवी माता का मंदिर है बिजाई माता का, ये हमारी कुल देवी है और जो धार्मिक आयोजन में है आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गाँव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुना करते सारे किसान कने बागवान भाई भैणा का स्वागत कने अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कने मेरा साथ दे दे सैकटरी साहब तो भाई सैकटरी साहब तो अंजो भी राम राम
2: राम राम जी राम राम कने कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले अहां दे बाकी सारे श्रोतियां जो कने किसान साथियां जो भी राम राम
1: जी। तो सैकटरी साहब एक बारी फिरी ते खेत साढ़े हरे भरे हवा दे कने पूरे हड़े खेत जड़न से हड़े किसान साथियों ने जड़ा सा भरियो लगा दे है ना जी, क्योंकि इस वक्त जड़ा अपनी प्रमुख फसल है धाना की फसल भाई लगाने का बड़ा जोर शोरे ने कम कार जड़ा सा हड़े किसान करा दे कने आशा कर दे कि सारे हड़े जड़ा भी किसान साथी अपने खेतों में कम कार करा दे अच्छा कम कमान कने अगे जाए कि अच्छी अच्छी फसल लैन कने मौसम तिना का भरपूर साथ दे।
2: दिखा बिल्कुल तुम ठीक ला देगा कि आने वाली फसल अहां के किसान साथी धाना की लाने वाले कने कुछ जगह कुछ किसान मक्की भी लाते हैं तो यह दोनों ही फसल जड़ियाँ पानी पर जड़ियाँ निर्भर कर दी कने या तो अच्छी बरसात हो अच्छी कुल्ला लगदियाँ होन ता ही अहां की यह फसल जी अच्छी पैदावार जी दिंदी है तो दुआ ही कर सकते हैं इतों तक कि मौसम किसानों के अनुरूप रहे कने तिना की जी फसल है बड़ी अच्छी होए ताकि तिना कोई नुकसान ना हो।
1: सैकटरी साहब दिखा अजकल अहाँ दिखा दे भी हैं कि इस महीने हालांकि ज़्यादातर सो हाड़िया साथियों जड़ा सा पानी की बड़ी बारी कमी रही ही पर इस साल अहाँ दिखा दे कि पानी जड़ा सा खुला है कने खूब जड़ा सा अपने टैमे दे कम करा दे कने जालू दिल करा दा तालू कम करा दे हड़े किसान साथी कने अहाँ अंदाजा यही है कि अगे भी मौसम देदा ही रहना कने सारे।

0: है ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल दिखा। हाँ सुनाना अपने किसान साथियों एक लोकगीत, पर पहले सुनाना एक छोटा दिया संदेश।
0: जी
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: ये नमक वगैरह कहीं दें दे। इसी चीज की
1: नमक
0: आप
1: इधर मिक्स कर देना।
0: अलग तीन देना ना।
1: नहीं, इधर मिक्स कर दो। 40 किलो है ना,
0: हाँ
1: जिदा 40 किलो का गाला होया थोड़ा,
0: हाँ जी
1: तो उधर कोई 2 किलो पाइता नमक। हाँ,
0: अच्छा
1: फिर
0: अच्छा
1: सोडा पाइता भी थोड़ा, 200 ग्राम सोडा है पचाई जाना। फिर
0: का इन्हें राती भी तो हाँ पांदे
1: राती नहीं पाते, दिन ही पाते।
0: जड़ा चुगे आए हैं
1: हाँ
0: ना,
1: जी हाँ जी
0: चुगी लिया बना पेट भरी लिया ना,
1: हाँ, जरा दिन खाई ले भाई।
0: बाकी ने रहने ताइया क्या बनाया जी
1: रहने
0: यार।
1: ताई भाई जी, इन्हें ना अजय पूरा मेरा जगाड़ नहीं होया, ये बताना है मैं थोड़ा ही है। मैं एक बनाया
0: हाँ
1: जिदा बरामदा पर वगैरह बनाया बाहर ते अंदर रात नूं उड़ने ताई, ते ज्यादा हुण मैं बधाने ले बैठे हाँ,
0: हाँ
1: बधाना है और जिदा ना बधे जाना तो उदा बधाई जाना। फिर
0: खुली हवादार जेड़ा से चाहिदा बहने
1: फिर
0: ने।
1: हाँ बाहर हवादार चाहिए ना।
0: हाँ कहना बाकी जी जिसी बोलते ना बकरी जड़ी है ये 22 प्रकार दी जड़ी बूटियां खांदी है ना, कहना 22 प्रकार दिया जेड़े से बीमारियां इसा दूध जेड़ा से दूर भगांदा है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो जी तुहां दस्या है इतना दूध होंदा, दूध भी तुहां बेचिया?
1: दूध बेचते नहीं जी,
0: अच्छा
1: बच्चे पै जाना, पर
0: अच्छा
1: जरूरत पै जाए पई जाए, जिन्हें पे कोई
0: कि
1: बीमार शिमार हुए ले
0: हाँ
1: जाते हो।
0: हाँ चलो ये भी आपसी जी है भाईचारा भी होंदा
1: हाँ
0: है ना,
1: भाईचारे चले जाते
0: कहना
1: बंदे।
0: अगर उसकी जरूरत है ता ही बेचारे को कि उम्मीद
1: हाँ
0: करी
1: जी हाँ
0: आए
1: जी,
0: होंदा ना कि अश्विनी हो रहा जेड़ा से दूध मिल
1: तो दूध
0: सकता
1: मिली जाता है।
0: है ना, बकरी पालन का काम तो हाँ करा कर दे। इस विच जियां कदी कोई परेशानी वगैरह भी होंदी नहीं, कोई बीमार बमूर तो नहीं हो
1: बीमार
0: जाती?
1: वगैरह होनी है बिच, पर मेरा सर्कल थोड़ा ठीक है स्टार्टिंग दे बिच ही।
0: हाँ जी
1: अपने जेडे अरस दे डॉक्टर है ना,
0: हाँ
1: डॉक्टर ते डॉक्टरनी वगैरह बहुत अच्छी हैं, उन्होंने पहले ही बीमा वगैरह करते हैं।
0: एक बकरी का क्या बीमे हिसाब होंदा,
1: एक बकरिया वो देंदे है वो 5,000 रुपया,
0: कहना फीस कितनी लेंदे है बीमे करने टाइम में
1: फीस 150 रुपया
0: साल
1: लेंदे
0: दी?
1: हाँ साले दी। उन्होंने 150 रुपया कट्टे मेरे सारी बकरियां का, 10
0: अच्छा
1: बकरियां बीमा किता,
0: अच्छा
1: तो वो मेरी मरिया भी तो पैसे देते मैं
0: चलो
1: उन्होंने।
0: थोड़े बहुत मिली ही है
1: हाँ
0: ना। बाकी जी घरेलू स्तर पर ही कुछ ऐसा आई जा तो हाँ आपको भी लगा लेते हो ना टीके वगैरह है ना,
1: हूँ तो थोड़ा नॉलेज भी हुई है ना,
0: है ना?
1: ज्यादा तो कांगड़े दे भी तुम्हें पता भी 100 बूटियां है, बंदा किसदा पिटदा रहता तो फिर पता लग जाता
0: हाँ
1: क्या
0: जी
1: खुआना
0: हाँ
1: क्या नहीं खुआना
0: बिल्कुल हाँ जी
1: मौसम
0: हाँ
1: के हिसाब ने। नए
0: अच्छा
1: नए बंदे के तो मुश्किल हो जाते ना,
0: हाँ जी
1: धीरे धीरे धीरे पता लग जाता ये बीमारी चलनी है, ये बीमारी चलनी है, तो फिर 50 तो दवाइयां घर बिच निकलनियाँ।
0: हाँ। बाकी कोई बकरी और कोई खास तो नहीं जी, कोई कि चीज कोई खुआने वाला होंगे जी जिससे तो पाचन शक्ति वगैरह बनी रहा है ना?
1: नहीं, ज्यादा नहीं कुछ भी।
0: अच्छा ये है कि बढ़िया दिन का घा पट्ठा जड़ा से
1: हाँ
0: होना
1: घा पट्ठा साफ सुथरी जगह हुए।
0: बहने इतने है ना,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कहना पीने पानी खूब
1: पानी
0: जड़ा
1: पीने साफ हुए।
0: जी। तो हाँ जिक्र किया कि इस वेले जड़ा तो हाँ वाल है ब्रीडर ऐसा क्वांटल दे लगभग या इसकी ज्यादा है
1: इससे
0: ना,
1: ज्यादा है
0: तो मारा वगैरह तो नहीं
1: नहीं
0: पौंदा?
1: पौंदा हमारा, वो तो बड़ा शरीफ है,
0: अच्छा
1: तुम बैठी जाओ पाँव ऊपर कुछ नहीं
0: अच्छा
1: बोलता,
0: हाँ तो इतना जिया जिसे बोलते हैं ताकतवर
1: बहुत
0: जैसे
1: ताकतवर है,
0: माड़ा मोटा था जिया
1: मारदा नहीं।
0: बंदा वे भी अंग वाला नहीं चली पौना ना।
1: हाँ बैठी जाते बंदे, मैं ही बैठी जाता।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो इसी ब्रीडर दिखना था बड़े दूर दूर जेड़े से हाँ पशु
1: हाँ
0: पालक भाई होंगे होने
1: हाँ
0: ना।
1: बंदे होंगे दूर, सलाह भी लेंदे बंदे जड़े
0: अच्छा
1: पाल देने, सलाह भी लेंदे कि
0: हाँ
1: कियां रखनियां बकरियां क्या करना, तो सलाह तो देना पौंदी। फिर
0: देखा ये अपने अनुभव होंगे जितने यहाँ कुछ ये बंड के
1: वही
0: ताई
1: ना।
0: कुछ की दपला होना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी, कोई बच्चा लेके जाता जा कुछ लेके जाता तो 50 बारी पुछता यार मैं क्या खावा, फिर फोन दे भी चीज पुछ दे भाई
0: हाँ
1: हूं क्या खावा हूं क्या खावा, तो
0: अच्छा
1: दसना तो पौंदा।
0: छोटा बच्चा अगर कोनी जिये पालने वास्ता लेना था कितने दिन तो हाँ दे जिये थोड़ी तो हाँ दी बकरी सुई पई जाता पड़ी आप दिन वाले तो
1: भाई
0: हाँ।
1: बच्चा कम से कम 4 महीने चाहिए, तीन
0: अच्छा
1: महीने तो दूध पींदा ही है बच्चा, तीन
0: हाँ
1: चार महीने फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो फिर वो बच्चा ग्रोथ भी किया करेगा, बिना दूध तो गर्मी आई जानी अंदर,
0: हाँ जी हाँ
1: फिर डॉक्टर को लेना तो फिर
0: ओबरे दूध नहीं है ना,
1: नहीं फर्क पौंदा ना।
0: मतलब ऐसा डाल ही खाना पैरू लगी पोवे है ना
1: भाई जी माँ का दूध ना 100 बीमारियां मारता है।
0: बिल्कुल। हाँ जी हाँ ठीक लगे तो हाँ जी यानी कि डाल ही खाना अगर हाँ था छेलू पैरू लगी पोवे
1: हाँ जी हाँ जी
0: इससे बाद अगर हाँ चाह तो खरीद सकते हैं ना,
1: हाँ जी हाँ
0: तो किन्ना किन्ने तक आई जाता अगर कोई लेना हुआ तो हाँ
1: जी,
0: ते
1: चार
0: या
1: महीने तक बच्चा ऑटोमेटिक 10-12 हज़ार का हो जाता, 10-12 हज़ार का बच्चा हो जाता, 4 महीने का बच्चा 15-16 किलो का हो जाता,
0: यानी कि ये
1: फिर
0: तो फिर वजन दे पैसे
1: वजन
0: हुए
1: दे
0: है
1: पैसे हो
0: ना
1: ना।
0: बाकी नहीं हुए है
1: इस
0: ना।
1: तो छोटा बच्चा कोई पाले भी ना तो पढ़ना नहीं, उन टाइम ज्यादा लगना, जिन्ना बच्चा बन गया होगा ना बनी ही होगा थोड़ा, तो फिर वो अगे ग्रोथ ज्यादा होनी होगी, जो माँ का दूध ही नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे ने चलना भी कहीं।
0: जियाँ तो हाँ जल अपना जियाँ जल भी तो हाँ अपना कोई जियाँ बकरी बेची है या छेलू बेचे है या सही है चिदा भार दा अंदाजा इन्हें लगाते
1: लगी
0: अंदा
1: जाता बाहर
0: कि
1: दंदा
0: कोई तोलने तालने दा भी आया कुछ?
1: नहीं, लगी जाता बाहर दंदा जा ना
0: हाँ
1: पता लगी जाता। आहा भी है ना फोन ना भी देखते रहने ना,
0: हाँ
1: तो फोन ना भी देखते रहने, तो सब फोन ना दे बिच ना बड़े बड़े फार्मा बिच सब
0: हाँ
1: मीटर दे कन्ना नाप दे, छेलू में लंबाई चौड़ाई नापी
0: अच्छा
1: के ना
0: फीते ना
1: हाँ फीते ना पूरा पूरा दस देना, तो एक
0: हाँ
1: दो बार आही भी नापिया तो पूरा पूरा ही आंदा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: यानी कि लंबाई ना बनेगी हाइट?
1: आ लंबाई नापनी ते पिछले हिस्से की गुलाई
0: अच्छा
1: पूरा पूरा
0: यानी
1: आई
0: कि
1: आंदा।
0: फीता मारी की है
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी,
0: हाँ दिखा ये भी तो हाँ बड़ी अच्छी गल जेड़ी सा
1: फिर
0: दसी है।
1: पूरा पूरा आई जाता।
0: हाँ कई बार नहीं भी पता लगता ठगी भी
1: हाँ
0: आंदे
1: जी हाँ
0: के
1: जी
0: है ना, नहीं कुनी आके दो ठार किट्ठे बेचे ने चार कई बार

0: इसी लोक गीत कन्नै कार्यक्रम दा समय इत्थों ही खत्म हो करदा। दस दईए कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग बिपिन कुमार, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, कन्नै हुण टियाले दे सदस्य रसीलू राम, कन्नै
1: सैकटरी दी इजाजत।
0: अच्छा जी।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइनियां सुना करदे सारे स्रोतियां दा इक बारी फिरी ते स्वागत करें। जियां कि अहां पहले भी दस्या टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कन्नै मेरा साथ दे सैकटरी होर
1: जी
0: तो सैकटरी साहब तुहानू जो भी राम राम
1: राम राम जी कन्नै अहां दे सुनने वाले श्रोतियां जो भी राम राम
0: जी जी। तो सैकटरी साहब दसा अज कल क्या काम कार लगाया तुहां अपने खेतां विच?
1: दिखा इस टाइम तो दिखा हाँ तो दाना कन्नै जिहड़ा मक्की दी खेती है ना
0: जी
1: सही है कम लग्या फिलहाल कन्नै कुछ जिहड़ियां बरसाती सब्जियां होंदियां ना
0: जी
1: ते तिन्हां दा भी कुछ जिहड़ा असां थोड़ा जिहा नर्सरी नुर्सरी लाई है मेला बूला तां लाई हैं पुट्टी करी पर हुण जिहड़ा अगला काम ऐसा ऐसा मौसमें पर ही चलना है कि कुत्थी कुत्थी अहां दी ऐसी जगह भी जित्थों पानी जिहड़ा है मौसमें पर ही जिहड़ा निर्भर करदा कन्नै या तो फिर आपूं बाल्टियां देना पौना।
0: बिल्कुल कन्नै सैकटरी साहब घबराने की तुहानू कोई जरूरत नहीं है कि दिखा बदल जिहड़े सह बार बार उमड़ी उमड़ी के आवा दे कन्नै हां जो आस है कि इस वारी है जिहड़ा सह बरखा जिहड़ा सह थोड़ियां जल्दी शुरू होई गईयां कन्नै गां भी इन्हां इयां ही बरकरार रहना तो भाई जिहड़ा भी तुहां सोचिया उस हिसाबे ने ही तुहाड़े कामकार जिहड़ा सह अगे आउणे ने खूब बरसणे कन्नै तुहां खूब कम करना।
1: बिल्कुल जी तुहां ठीक लिखा कि मौसम विभाग की जी है जी चेतावनी जी बोल सकते आई हैगी कि जी मानसून है सह 10 दिन बोलिया जल्दी है वह अगर दी तो अगर ये जी जी खबर मिली हो अगर ये सही हुई तो तिंदे हिसाब ने फिर अहम का जो काम कार ऐसा वधिया हो जाना
0: जी जी जी। कने दिखा जी इस दे सोगी अहम अपने किसान साथियों बोलना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है ना जी किसी भी प्रकार की दिखा जी कई बार प्राकृतिक आपदाएं आई जाए किसी प्रकार की किसी भी समस्या जो हल करने ताई सरकार द्वारा जिहड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिहड़ा सा चलाया है
1: एक
0: है ना जी योजना चलाई हो तो
1: ये
0: योजना तुहाड़े अपने ताई है तो जो इस योजना का जिहड़ा सा पूरी जानकारी होना चाहिए क्या कि दिखा अहां कम तो बड़ा भारी करते बड़ी मेहनत ने करते पर कई बार क्या होंगे प्राकृतिक आपदा आई जानी है कई बार के किसी प्रकार की कोई बीमारी हड़ी है फसल लगी जाती है कीट पतंगे किसी भी प्रकार का जिहड़ा सा कई बार नुकसान करते तो इन सारिया नुकसान दियाँ भरपाई करने ताई ही जिहड़ा सा ये सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है ताकि किसान जो घटते घट नुकसान जिहड़ा सा होना कने नुकसान होई भी जां तां तिद्दी भरपाई भी जिहड़ा सा कीती जाई सके।
1: बिल्कुल तुहां ठीक लाया दिखा गया कि अहां दे जिहड़े किसान साथी हन इन्हां नूं इस बीमे लैने वास्ते जिहड़ा सा अपनी जेब ते ज्यादा पैसा भी नहीं देना पौंदा है कहे कि इस च जिहड़ा है 70% ज्यादा तां अहां दी सरकार ही जिहड़ा है प्रीमियम दिंदी है कने किसानें कुछ छोटा जिहा अमाउंट है जिहड़ा सा देना पौंदा है कने अहें ज़्यादा मगजबारी भी नहीं करना पौंदी सिर्फ अहां जित्थू अपने बैंक च जाए करी जित्थू साडा कोई खाता है तित्थू जाए के बोलना ही है कि अहां दी जिहड़ी बीमा करना है तो बीमा कंपनी तुहाडी बैंक के जरिए तुहां दा जिहड़ा सा बीमा भी करी दिंदी फसलां दा कने बाद जिहड़ा तुहां जो अनुदान दी अगर जरूरत पौंदी है भगवान ना करे पोए कने जे होंदी भी है तां सह तीए बैंक के जरिए तुहां जो सह पैसा जिहड़ा है मिली जांदा है
0: जी। कने दिखा ये जिहड़ा सहायता राशि होंदी अहां इसे सहायता राशि बोल सकदे अनुदान बोल सकदे जो भी है ना जी तां ये तां ही मिली सकदी अगर तुहां तिन्हां जो संबंधित शाखा है तो हाँ जिहड़ा सा समय रहिंदे जिहड़ा सा अपने नुकसान का आकलन करने बारे च बोल गए ये नहीं है कि नुकसान तुहाड़ा अज होई है कने तुहां महीने बाद चलियो कि भाई देदा होई है तो यह दिखा ये सारिया चीज़ा तां ही चलदियां जालू तुहां अगर समय रहिंदे इन्हां पर कम करगे तो
1: जी बिल्कुल तुहां जियां कोई नुकसान हुंदा है तुहां 24 ते 48 घंटे के अंदर अंदर जिहड़ा सा तुहां संबंधित विभाग कन्नै संपर्क कर सकदे ने कने अपने नुकसान वास्ते तिन्हां दस्सी सकदे ने कने जिहड़ा विभाग ऐसा भी जिहड़ा है समय रहिंदे आए कि तुहां दे नुकसान का आकलन करदा कने तुहां जो भी तुहां दी अनुदान राशि सहायता राशि बनदी है सह तुहां जो जिहड़ी अप्रूव कीती जांदी है कने जल्द तो जल्द है तुहां दे खाते विच भी आ जांदी है
0: जी जी। तो अहां तां यही बोलना चाहेंगे कि दिखा जी जानकारी सह बोलते ना जानकारी विच ही जिहड़ा सा बचाव हुंदा है ना जी तो अगर तुहां जानकारी होगी तां ही तुहां जिहड़ा सा अगे जाई के इन्हां चीज़ां जो जुड़ी सकदे कने अपने नुकसान जो घटते घट कर सकते तो अहां यही बोलना चाहेंगे कि जिन्हां किसान साथियां हो यह चीज़ां दे बारे च पता है सह तो ठीक है जिन्हें नहीं है पता तो सह भाई दुआ किसानों से पूछताछ करके इन्हां योजना ने जुड़ने दे कियां कियां जुड़ना है संबंधित सारे दस्तावेज क्या क्या चाहिए ये सारी जानकारी लेके इस योजना ने जिहड़ा सा जुड़ी
1: सकदे। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान साथियों इसके बाद हाँ तुम सुना एक लोक गीत पर पहले सुनना एक संदेश
0: जी।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: जी सैकटरी साहब, सुने अहाँ ये लोकगीत कने
1: जी
0: एक बारी फिरी ते चलना अपने अहाँ खेत खलिहाण
1: बिल्कुल
0: कने। दिखा जी गल करनी अहाँ बरसात दे मौसम दी, तां मौसम तां बरसात दा हुण लगी पिया भाई। तां ये जिहड़ा बरसात दा मौसम आउंदा, कई प्रकार दियां हंजो जिहड़ा सै समस्याएं भी लेके आउंदा,
1: बिल्कुल
0: तां सांझो जिहड़ा सै समय रहिंदे जिहड़ा सै इन्हां समस्याएं दा अहाँ समाधान कियां करना, उहनां ते निपटना कियां, ते इहनां दी हड़ी पूरी पूरी तैयारी जिहड़ा सै रहना चाहीदी
1: बिल्कुल
0: चाहीदी,
1: लिखा
0: चाहे अहाँ गल करिए अपनी अहाँ पर्यावरण दी, चाहे अहाँ डंगर बछुए दी, सांझो जिहड़ा सै सारे बख्या जिहड़ा सै तैयार रहना चाहीदा, ताकि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बरसात दे मौसम विच सांझो घट ते घट नुकसान होवे।
1: बिल्कुल तुहां ठीक लाह दिखा। बरसात दा मौसम जिहड़ा ऐ सै अहां वास्ते बड़ी चुनौतियां लई के आउंदा है,
0: जी जी
1: कि खास करके तां सब तों पहले आ जो ध्यान आउंदा कि कई वारी क्या हुंदा कि अहां अपने डंगर बछुआ लै के बणाए भी जांदे नाल उहनूं ओह टपदे, तां
0: बिल्कुल
1: सह वी सानूं ध्यान रखना चाहिदा कि अगर बरखा होदी तां इहनां नालूआं जां बोलदे ना खड्डां ते दूर रहना चाहीदा, क्योंकि डंगर बछू भी कई वारी रुढ़ जांदे, कई वारी अपना भी नुकसान होने का डर रहिंदा।
0: बिल्कुल कना हाँ हर साल सुनते ही हैं कि
1: बिल्कुल
0: दिखा जी टाइमे का पता नहीं होंदा है ना जी, कि कलू कौन दिया नालू जड़ा सा किरणा पानी तिस बिच
1: जी
0: आई
1: बिल्कुल
0: जाना,
1: बिल्कुल
0: कना अह एक दो साल हो दिखते कि हूँ तो वैसे पता नहीं लगा था कि एक छोटी दही कुल भी सभी कलू बड़ा नाला बनी आदा, कलू नदी बनी आदी, तो हाँ भी
1: बिल्कुल
0: सजो
1: दिखा
0: पता नहीं लगा
1: अहाँ
0: था।
1: का पर्यावरण जोड़ा सा बदली
0: हाँ
1: है गया, कह
0: बिल्कुल
1: कि जो ये पता लगा था कि कुथू कालू क्या बदल फट
0: हाँ
1: जाता, कहते कुछ कुला चाहिए कुछ नालू कितना पानी आ जाता,
0: जी जी
1: तो अहें वो नदियाँ नालिया से जरा सा दूर रहने की भी जरूरत है आने वाले मौसम में, ताकि अहें कोई जानी माली या पशु या किसी और तरह का नुकसान जरा सा ना हो।
0: बिल्कुल कने दिखा जी बरसात का मौसम लग गया, इस विच अगर अहाँ थोड़ी देर कोशिश करन के ज़्यादा तो ज़्यादा पौध अहाँ लगान,
1: जी
0: ताकि हाड़ा पर्यावरण जरा सा सुरक्षित रखें,
1: बिल्कुल
0: कने
1: बिल्कुल दिखा बरसात
0: जरा
1: के मौसम में तो ठीक ला दे, कई बार अहते पौधे जड़े होंगे
0: हाँ
1: ना शायद जल्दी पकड़ पकड़ देन, तो जल उस अहते पौधे जल्दी पकड़ पकड़ देन तो शायद जल्दी बढ़ूंदे भी हैं, अहें बरसात के बिच लगाए गए पौधे जड़े ना शायद बड़े जल्दी बढ़वार पकड़ देन, तो यह भी अच्छा एक मौसम है कि अहाँ पर्यावरण ने जुड़ी करी या पौधे लगाई करी पर्यावरण जो बचाई सकते
0: हाँ कने दिखा जी सारे पता है कि ये जो मिट्टी कटाव जो था ये रोकते ही रोकते हैं
1: बिल्कुल
0: है ना जी, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज़्यादा जोड़ा सा है थोड़ी मिट्टी की बचत भी होनी, गलाने का मतलब यह है कि घट्ट घट्टी जमीन रुड़नी, कने ज़्यादा तो ज़्यादा कृषि योग्य भूमि तो अंजवाल बचनी। अहाँ देखे होना कि हड़े कई ऐसे किसान हैं जोड़ा बाढ़ बिच जोड़ा सा अपनी कई अपनी खेतों जोड़ा सा गुवाई देंगे है ना,
1: बिल्कुल
0: हर साल
1: तुम
0: हाँ जो देखने
1: बिल्कुल
0: मिलती
1: बिल्कुल
0: हैं
1: जी
0: ये चीज़ें, तो अगर अहाँ छोटी देर पहल करन इन्हों खेतों के कंढे कंढे इन्हों छोटे छोटे नालूआं का कंढे नदियों का कंढे कुलों का कंढे अगर अहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगान, तो अहाँ अपनी जमीन जोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बचाई सकते
1: जी
0: बाढ़
1: बिल्कुल
0: के प्रकोप से।
1: बिल्कुल जी दिखा अहाँ कितनी बरसात के मौसम बिच वरतने की सावधानियों वास्ते जी गलबात कने हूँ अपने किसान साथी सुनना एक प्यार दिया लोक गीत, पर पहले सुनने संदेश।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.

0: hurry. Offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
1: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ रुपीज 7.71 लाख। साथ ही पाइए रुपीज 55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: जी सेक्रेटरी साहब, तां साडा जिहड़ा सगलाने दा मतलब यही हा कि अगर अहां अपना पर्यावरण संरक्षण करना है या फिर अपना अहां पर्यावरण बचाने की गल करनी है, तो हाँ जो ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि इस धरती उपर ज़्यादा तो ज़्यादा हरियाली होवे। कने अहां सारे जानते हैं कि हरियाली होगी तो ही धरती पर जिहड़ा सा खुशहाली हो सकती।
1: जी बिल्कुल ठीक है। देखा बरसात के मौसम में जहाँ पहले ही बोले कि पेड़ पौधे लगा, कहीं कई बार क्या होंगे कि अहला या कुछ ला में वक्त नहीं होंगे पौधे लगाने का, तो बरसात के मौसम च ना अजकल क्या होंगे कि अहाँ बाजार से फल फ्रूट तो लेते हैं खाने, तो जी अंब हो या कोई भी फ्रूट हो बी आते सुटने नहीं लफाफे पाई ले, चलो भी कुछ कुछ बाहर जाते हैं जंगल साइड या कुछ भी रोड साइड का, तो तुम अलग अलग जगह सुट दे। कई बार क्या होंगे सर अपने आप भी अगर तुम 100 बीज भी सट गए ना कहीं 10 भी लगी है ना, तो सब भी बड़ी बड़ी बड़ी योगदान है एक तरह से मैं बोलता
0: जी। यानी कि अपनी तरफ से संजो कोशिश यही करना चाहिए कि देखा जी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड आवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today attended the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. Speaking at the event, he highlighted India's rapid technological transformation, stronger India-EU cooperation, and the growing role of innovation in solving global challenges.
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
3: Earlier, Prime Minister held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability, and maritime infrastructure.
2: Saint-Gobain Chairman and CEO Benoît Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net-zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships, and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling, and deep sea port development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sion. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. The Prime Minister is scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event this evening. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, the minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency, and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. The government recorded substantial growth in the coverage and delivery of scholarship benefits to eligible scheduled caste or SC students during the current financial year. The Ministry of Social Justice and Empowerment said that under the post-matric scholarship scheme for SC students, the centre released more than 6,208 crore rupees, reaching over 47 lakh students. While in pre-matric scholarship scheme for SC and others, the government has disbursed more than 562 crore rupees, benefiting over 26 lakh students. The UAE has approved a major new regulation setting the minimum age for social media use at 15 years, a sweeping move aimed at strengthening child protection in the digital space. The decision was taken by the UAE cabinet, chaired by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. In FIFA World Cup 2026, Czechia will take on South Africa in Group A clash at Atlanta Stadium in United States tonight. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Later, Switzerland will face Bosnia and Herzegovina in Group B match at Los Angeles Stadium in United States at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम विरासत रिले किया जाएगा।

0: पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
1: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, IT पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिल

0: आता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा। सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकारी से कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर

0: heart of the Act East policy, and it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, Purvottar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं।
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को दिलाई शपथ। जनसेवा की भावना से काम करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टैट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
5: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स है इंप्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा। लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू, जहां हमारे रीजनल ऑफिस है या इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, पूरे इंडिया में 200 जगह कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी है, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करे।
4: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
6: न निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहां एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
4: इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने और नशे के विरुद्ध जन आंदोलन को सशक्त बनाने का लोगों को सामूहिक संकल्प भी दिलाया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना को सरकार ने गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है।
7: देश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है। कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया हमने परिवार विस्थापित हुए है उपलब्ध करवाया, अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा। दूसरा था कि हेलीपोर्ट्स बनाया जाए। तीसरा, ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में हम बनाने जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था बहुत ज्यादा आने लगा है।
4: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिला के टापरी स्थित फल मंडी का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे छोटे व सीमांत बागवानों को लाभ मिलेगा। वे कल शाम किन्नौर जिला के टापरी में आयोजित 6 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2027 से इस मेले को धूमधाम से मनाया जा रहा है और किन्नौरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये एक उपयुक्त मंच साबित हो रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वे आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की शैक्षणिक संरचना में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है और IIT की संख्या 16 से बढ़कर 23 और IIM की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को केवल संख्या बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय टेट टेस्ट की बाध्यता के बाद नौकरी जाने का संकट सही नहीं है। विनोद कुमार सूद ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक अध्यापकों की नौकरी खतरे में है और 2010 से पहले हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों और योग्यता मानदंडों के अनुसार हुई है। बाद में तय पात्रता शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
8: जितने भी योग्यता के मानदंड या कोई भी नोटिफिकेशन निकली है वो आगे के लिए इम्प्लीमेंट हुई। 2010 से आगे के लिए तो ये सभी टीचर्स ने जितने भी नियुक्त हुए पास की है, लेकिन उससे पहले

0: ऐसा प्रोविजन नहीं था। आज तक जितनी भी नीतियां बनी है, जितनी भी रेगुलेशन संशोधन हुए हैं या नोटिफिकेशन हुए हैं, वो आगे के लिए। हमारा तर्क यही है कि 2010 से पहले तो पूरी उन्होंने अपनी योग्यताएं पूरी की, 2010 से पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, अब एकदम से दी है। तो जो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके माध्यम से गुणवत्ता नहीं जा रही। माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी के माध्यम से।
1: भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
2: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो वंशी में आए थे। एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
1: इस बीच भाजपा जिला शिमला की मासिक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व जिला प्रभारी सुरेश चंदेल उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों व केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क अभियानों की समीक्षा की गई। सुरेश चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। बैठक के बाद बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां लोगों को केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए गए। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गेहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पाल की जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पाल की जागरण पैदल यात्रा आज गेहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गेहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
3: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है, छाई पाल की जागरण। और जो बड़ोल है जहां पर देवी माता का मंदिर है, बिजाई माता का, ये हमारी कुल देवी है और जो धार्मिक आयोजन में है, आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गांव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
1: लाहौल स्पीति जिला के ग्रामफू कोकसर मार्ग पर धारा वाटरफॉल के पास आज एक वाहन के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई जबकि 1 घायल हुआ है। हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में हरियाणा के गुरुग्राम की 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका 11 माह का बेटा शामिल है। इस घटना में बिहार के वैशाली की घायल 52 वर्षीय सविता देवी का सिविल अस्पताल मनाली में उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ, जन सेवा की भावना से कार्य करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित, कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंट वार्ता, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं युवा नेता करण नंदा जी और इनसे चर्चा कर रही हैं समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई है।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रोताओं, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। अगर देश की युवा आबादी को सही शिक्षा प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध हों तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कौशल विकास रोजगार सृजन उद्यमिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की हैं। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। आज की इस भेंटवार्ता में हम इन्हीं योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे कि युवाओं के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है। हमारी भेंटवार्ता का विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस विषय पर बातचीत के लिए आज आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी। नंदा जी, आप पिछले लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं और आपने भाजपा के विभिन्न संगठनों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। आप युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों को भी स्पष्टता व प्रखरता से विभिन्न मंचों पर उठाते रहते हैं। करण नंदा जी, आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है।
2: आप सभी का धन्यवाद एवं अभिनंदन। जिस प्रकार से आपने आज युवाओं के साथ एक संवाद करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा।
1: जी नंदा जी, केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं और युवाओं के कल्याण के दृष्टिकोण से आप इस कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं?
2: ये 12 साल विकास के हैं, जन कल्याण के हैं और ये उसी संकल्प के 12 साल है
1: जी
2: जब प्रधानमंत्री पहली बारी 2014 में प्रधानमंत्री बने और शपथ ली
1: जी।
2: नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो उन्होंने उस समय देखा जब भारत एक काल कोठरी के दौर से जुड़ रहा था
1: जी।
2: राजनीति में एक काला अध्याय समाप्त होने के बाद एक नई ऊर्जा का संचलन हुआ और एक नए उदा आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ
1: जी।
2: किरणें निकली और हरेक व्यक्ति को, हरेक श्रेणी को और हरेक वर्ग को एक आशा हुई कि एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जो कुछ करके दिखाएंगे। भारत कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया है, ये उसी संकल्प का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है
1: जी।
2: युवाओं की दृष्टि से आप देखिए, इंडिया यूथ डिविडेंड
1: जी,
2: आज भारत युवाओं का देश है
1: जी।
2: हमें खुशी है कि हमारे ऐसे देश है दुनिया के अंदर, हमारे पड़ोसी देश भी ऐसे हो चुके हैं जो बूढ़े हो रहे
1: जी।
2: आज हमारा देश युवाओं का देश है। आज 65% आबादी देश की 35 वर्ष से कम उम्र आयु की है
1: जी।
2: इससे दिखता है कि किस प्रकार से युवा देश को चलाना चाहता है। इससे पहले युवाओं को कह जाता था अफसर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती है, पर प्रधानमंत्री आए तो युवाओं को अवसर प्रदान किया
1: जी।
2: आज इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और यह युवाओं के लिए भी है। आज भारत में युवा केवल मात्र लाभार्थी नहीं है, ही इज नॉट ओनली अ बेनिफिशियरी बट वो एक विकसित भारत 2047 का योजनाकार है। ही इज द बिल्डर ऑफ विकसित भारत 2027। तो ये विजन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। आज देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने यौवन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले शिक्षा की बात होती है
1: जी।
2: तो हम शिक्षा देखिए किस प्रकार से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एक्सपेंशन की गई। अगर आप देखेंगे कि IITs की संख्या 6 थी, आज 23 है देश के अंदर
1: जी।
2: तो आज IIT के माध्यम से इंजीनियर कितने तादाद में निकल रहे हैं। IIM पहले 13 थे, आज 21 है। एम्स 7 थे आज 20 है, मेडिकल कॉलेज 387 थे आज 780 से ज्यादा है, और एमबीबीएस की सीटों ने तो कमाल ही कर दिया कि 51,000 थी आज 1.18 लाख है
1: जी,
2: दुगनी हुई है। तो ये शिक्षा जो है, शिक्षा ने एक युवा को शिक्षित भी बनाया और एक नौकरी करने वाला और जनसेवक भी बनाया
1: जी।
2: तो इस प्रकार से अनेकों चीजें चली। देखिए पीएम श्री स्कूल, आप देखिए ज्यादा अभी प्रचलन में नहीं आए हैं, पर 14,500 श्री स्कूल जो है वो भारत के अंदर खोले गए हैं। उसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन और मॉडर्न लर्निंग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कॉलेज और स्कूल में ही जो है एक युवा को सशक्त बनाया गया। उसके उपरांत अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया और यूथ, उसमें एक यूथ को सशक्त मतलब एम्पावरमेंट, यूपीआई देखेंगे आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रकल्प बन के निकला है भारत, जहां पे क्यूआर कोड स्कैन करने से 1 रुपए से लेके जो है 50,000-1 लाख की राशि जो है वो दी जाती है। वो युवा को एक अपना बिजनेस खोलने के लिए कितना बड़ा एक डिजिटल माध्यम बन के सामने आया है। तो एक एक छोटी छोटी सोच को जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जो है युवाओं के लिए जो है वो पैदा करने का प्रयास किया है
1: जी।
2: आप देखेंगे कि देश में मिडिल क्लास परिवार ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वहां पे हमेशा आप देखेंगे किस प्रकार से जब भी वहां के जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कहते हैं अरे जागो, काम करो, कुछ करो, कुछ कर लो
1: जी।
2: तो वो चिंता का विषय होता है। आज जो है स्पोर्ट्स में जो रेवोल्यूशन है, खेलों में जो रेवोल्यूशन है, आज खेल से भी एक युवा जो है वो अपनी जिंदगी बना सकता है, और खेल से जो है एक युवा अपनी एक पूरी गति जो है जीवन की वो स्थापित कर सकता है। खेलो इंडिया योजना, बहुत बड़ा फंड उसके अलॉट किया गया, और उसमें जो है किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर जो है खेलों को सशक्त बनाया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, और रिकॉर्ड बजट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए निर्धारित किया गया
1: जी।
2: उसमें आप देखेंगे कि उसके उपरांत कितने सारे जो है वो आयोजन किए गए, उसमें ओलंपिक्स में देश की भागीदारी बढ़ी, उसमें भी मेडल जीतने का प्रयास हुआ, पैरालंपिक, चेस, बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स, इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से जो है वैभव बढ़ता गया। और अभी भी आप देखेंगे किस प्रकार से जो है अभी प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और हमारे जितने भी लोग हैं वो बधाइयां देते हैं कि हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में मेडल जीत के आया है। वो क्यों? क्योंकि वो एक विजन है। विकसित भारत, आप डायलॉग की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की जब बात की थी तो उसके पीछे एक सोच है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देश के अंदर परिवारवाद चलता आया है, पहले से जो है एक ही परिवार के जो है वो 5-5, 10-10 विधायक भी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं, पर इन्होंने एक संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं देश की राजनीति में 1 लाख युवाओं को लेकर आऊंगा।
1: जी बिल्कुल।
2: और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की धरती संकल्प लिया
1: जी।
2: और जब 1 लाख युवाओं को लेने आए तो मंडपम दिल्ली में उन्होंने सबसे पहला जो है उसके अंदर एक काम किया कि युवाओं को बुलाया
1: जी।
2: कि युवा आए और मंडप में बैठें और डायलॉग करें अपने प्रधानमंत्री के साथ। उससे युवा की सोच भी आगे निकल के आती है कि किस प्रकार से है, और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करते हुए युवाओं को जो है राजनीति में लेके आने वाले ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक नई पीढ़ी को राजनीति में जन्म दिया है। क्योंकि अगर एक परिवार ही देश को चलाएगा तो उससे जो है देश विकसित नहीं होगा
1: जी।
2: और अगर एक परिवार जो है उससे बाहर निकलकर जो युवा उसने देखा है कि उसके आसपास का वातावरण, वायुमंडल किस प्रकार का है, देश को आज क्या चाहिए, देश को किस प्रकार का युग चाहिए, तो वो एक युवा ही कर सकता है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और एमएलए कैटेगरी, इवन प्रधान, जिला परिषद और साथ में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे युवा पार्टी की ओर पे आगे बढ़ रही है, जिसकी आयु जो है मेंबरशिप की वो 35 साल से कम वाले भी है और साथ में 55 साल से कम के। हमें गर्व है नितिन नवीन जी जो है उनकी आयु सिर्फ 45 वर्ष है, पर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है वो युवाओं के लिए खुद एग्जाम्पल बन के आए हैं
1: जी। बिल्कुल।
2: साथ में आप देखें कि योजनाएं अनेक हैं। देखिए युवा अब इसमें से अपना कॉलेज का दौर कंप्लीट कर गया, उसने अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट करी, पर उसके बाद क्या करें
1: जी।
2: पर पहले होता था युवा बोलते थे हम सरकारी नौकरी ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी चले जाएंगे, कहीं कॉर्पोरेट हाउसेज में लग जाएंगे, एमएनसीज में नौकरी कर लेंगे या किसी निजी व्यापारी के पास नौकरी कर लेंगे
1: जी।
2: पर प्रधानमंत्री की सोच

0: है कि किस प्रकार से आज जो एक युवा है वो नौकरी ढूंढने वाला नहीं
1: ढूंढने
0: है,
1: वाला नहीं है, वो नौकरी देने वाला
0: वो देने वाला बन गया है।
1: जी
0: और उसके पीछे सबसे बड़ी सोच क्या है, संकल्पित सोच है कि स्टैंडअप योजना तो
1: जी
0: 2016 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार वो स्थापित की गई,
1: जी
0: उसके अंदर आज 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त करे वाले स्टार्टअप जो है वो
1: जी
0: देश के अंदर काम कर रहे हैं।
1: जी
0: आप देखिए 21 लाख से ज्यादा उसमें प्रत्यक्ष रोजगार डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मिली है, वो किस्म के माध्यम से मिली है, स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से मिली है।
1: बिल्कुल
0: 2025 की बात कर ले तो अकेले एक वर्ष में 44,000 स्टार्टअप जो है वो उसके अंदर पंजीकृत किए गए, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 55,200 उसके अंदर जो है हमारे स्टार्टअप जो है उससे अधिक जो है वो पंजीकृत हुए।
1: जी
0: किस
1: हाँ
0: प्रकार से एक स्वभाव बढ़ा।
1: जी
0: अब उनके लिए पैसा, अब वो पैसा कहां से लाएंगे, अब उनको जो है युवा है घर की क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो लाए मुद्रा योजना।
1: जी
0: तो मुद्रा योजना लेके आए, तो एक स्टार्टअप है, एक दुकान तो बना दी, दुकान को चलाना भी है, एक फैक्ट्री तो लगा दी पर उसको संचालित भी करना है, तो क्या किया, मुद्रा योजना लेके आए। आज देश में मुद्रा योजना में 57 करोड़ केसेस जो है वो थ्रू हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो है युवाओं के लिए 44,000 लाख करोड़ की एक राशि जो है वो मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप स्टैंडअप को खड़ा करने के लिए दी गई।
1: जी
0: ये पैसा जो है वो युवाओं के हाथ में गया। अब देखिए वो जो स्टार्टअप है वो बनने जा रहे हैं यूनिकॉर्न। तो
1: जी
0: यूनिकॉर्न एक ना और शब्द लेके आए कि अब पहले छोटा व्यापार था, धीरे धीरे बड़े
1: जो बढ़
0: हुए
1: रहा है
0: तो वो स्टैंडअप स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बढ़े, अब
1: जी
0: वो संकल्पित यूनिकॉर्न स्टेट्स वो स्थित हो रहे हैं, और उसके लिए जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ का अतिरिक्त लोन भी लेने के आए हैं कि उनको दिया जाए। तो आप देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में इन्होंने स्टार्टअप को किस प्रकार से एक मार्ग प्रस्तुत करके भेजा है, तो ये
1: जी
0: सोच है।
1: जी
0: अगर आप बात करें इंप्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव्स की तो
1: जी
0: उसको कहते हैं ELI, तो इस प्रकार तकरीबन जो है 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंप्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव के माध्यम से चले। उसके ऊपर जो है इसका टारगेट इन्होंने जो है इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम 3.5 करोड़ नौकरियां इसके माध्यम से जो है देश में संचालित करेंगे,
1: जी
0: और ये संकल्प लिया गया। अभी तक जो पहला उसमें है फर्स्ट टाइमर इंप्लॉयमेंट, देखिए एक होता
1: जी
0: है कि एक ने काम किया छोड़ दिया नौकरी, उसको भी अगर गिन लें तो फर्स्ट टाइम जो नौकरी करने व्यक्ति आएगा
1: जी
0: वो 1.92 करोड़, ऐसा
1: जी
0: टारगेट लिया है कि इनको जो है इंप्लॉयमेंट मिलेगी। तो युवा को सुरक्षित एक सीढ़ी दी है, एक पीढ़ी को सुरक्षा दी है।
1: नंदा जी, आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब माना जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम युवाओं के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए बात है स्टार्टअप और स्टैंडअप की।
1: जी
0: मैंने पहले ही कहा कि पहले युवा रोजगार ढूंढता था,
1: जी
0: देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हमारे युवा पढ़ के लिख कर दूसरे देशों में जो है वो नौकरियां ढूंढने जाते थे
1: जी
0: और वहां बड़े साइंटिस्ट बनते थे और वहां बड़े डॉक्टर और सर्जन बना करते थे, पर आज स्टैंडअप इसके माध्यम से
1: जी
0: हमारा युवा हमारे देश में ही काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत को जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहा है,
1: जी बिल्कुल
0: और उनको जो है यहीं पर नौकरी करके अपनी ही लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये नीतिगत जो है ये सोच में परिवर्तन आया है स्टैंडअप और स्टार्टअप के माध्यम से।
1: जी नंदा जी, जैसा कि आपने पहले भी उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं में अनंत ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता है, और युवा आबादी को अगर सही दिशा, प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर मिले तो वे राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। आपका क्या मानना है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सही दिशा देने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए क्या-क्या पहलें की गई हैं?
0: देखिए युग बदलते हैं, आज युग किसका है, आज युग है रोबोटिक्स का,
1: जी
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 3D का, पेंटिंग इनोवेशन का,
1: जी
0: और अगर अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके अंदर 10,000 से अधिक अटल टिंकलर लैब्स को खोला गया है। आज स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अंतिम तक एक एक युवा पहले ही इन सब चीजों से परिचित हो जाएगा, तो
1: जी
0: जो नया युग आ रहा है तो हमारा युवा नए युग के लिए तैयार है।
1: जी बिल्कुल
0: जब वो तैयार रहेगा तो वो भारत को सशक्त भी बनाएगा और विकसित भारत में विकसित भारत को करने के लिए
1: जी
0: संकल्पित भी रहेगा।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा नंदा जी। निश्चित तौर पर हमारा देश युवाओं का देश है और हमारा युवा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 की

0: परिकल्पना क्या है और इसमें युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
1: जिस ओर युवा चलता है उस ओर माना चलता है
0: जी,
1: तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो युवा है वो भारत को विकसित बनाने में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का मतलब ये है वी आर हेडिंग टूवर्ड डेवलप्ड इंडिया, जहां पर हमारे पास 6 से 8 से 14 लेन रोड भी होएंगे, हवाई जहाज हवाई अड्डों के लिए बड़ी पट्टिकाएं भी होएगी, हमारे पास हवा में बात करने वाली ट्रेनें भी होएगी, हमारे पास ऐसे जहाज भी होएंगे जो समुद्र के अंदर सबमरीन की ओर चलेंगे और ऊपर भी चलेंगे, और उसकी एरोनॉटिकल स्पीड जो है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की भी होएगी। उनको संचालित करने के लिए एक युवा प्रशिक्षित किया जा रहा है
0: जी।
1: मैं यहीं पे उल्लेख करूंगा कि स्किल इंडिया मिशन जो है वो 2015 में 14 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 15 में ये शुरू हुआ। आज मुझे गर्व है कि 1.6 करोड़ से अधिक युवा इस स्किल इंडिया रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा है और पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हुआ है। आज 15,000 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स जो है इसके अंदर भारत में स्थापित कर दिए गए हैं और इसके अंदर 7,000 ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसको स्किल हब्स कहा जाता है
0: जी, जी,
1: वो स्थापित किए गए हैं। तो जो मैंने बात करी विकसित भारत की उसके लिए आज ही इनको तैयार किया जा रहा है। और यही नहीं छोड़ा, जो गांव के परिभाषा से जुड़ना चाहते हैं, जो गांव में हिमाचली टोपी सिलते हैं, ऊनी रजाइयां सिलते हैं, साथ में जो है पट्टियों के काम करते हैं, उनके लिए भी योजना बनाई गई विश्वकर्मा योजना, और उनको भी आज इंप्लॉयमेंट का एक स्थान दिया है, चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो हमारे एक गांव में एक छोटी सी चीज बनाए, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है। आज हमारा जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में गूंज रही है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल से आभारी हैं।
0: जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, आपका क्या मानना है कि भारत में युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: आज से पहले हमारे जितने भी जो हमारे क्राफ्टमैन है
0: जी,
1: उनको केवल मात्र दबाने का प्रयास किया गया। आज जो है आप देखेंगे केवल मात्र उनको उनके इतने परिश्रम का क्या मूल्य मिलता था, आज से पहले नहीं मिलता था
0: जी।
1: और जब से ये योजनाएं आई है और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय से लेके राष्ट्र स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है, जिला से लेके जो है खंड तक उसके ऊपर काम किया गया है, आज उस क्राफ्टमैन को, आज उस योजनाकार को अपनी वस्तु के 1,000 से अधिक मूल्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो सीधा जो व्यक्ति उस चीज का निर्माण कर रहा है वो आज उसका जो है उसको मूल भी मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री की सोच है
0: जी।
1: आज देखिए जब प्रधानमंत्री किसी अन्य राष्ट्र में भी जाते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं, तो हिमाचली टोपी प्रचारने का प्रचलन उन्होंने शुरू किया
0: जी, बिल्कुल।
1: आज जो है हिमाचल जो है यहाँ पे चंबा का रुमाल जो है वो किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश गर्व महसूस करता है
0: जी।
1: और इसी प्रकार की देश की अनेकों वस्तु आज की डेट में जो है तहखानों में नहीं होती है पर वेबसाइट पे होती है, और प्रधानमंत्री जो है उसकी ऑक्शन करते हैं और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से भी कोई वस्तु मिली है तो वो भी एक व्यक्ति जो है अपने घर के लिए खरीद सकता है, मोल सकता है। तो ये सोच में परिवर्तन आया है। आज प्रधानमंत्री का जो भवन है वो लोक भवन, जन सेवा भवन बन के निकला है, और जो पहले के जो हमारे जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वहां प्रधानमंत्री के भवन जो है वो जनता के लिए बंद हो जाते थे
0: जी।
1: तो आज जो है हर चीज जो है सेवा संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और युवा ही जो है वो देश को चलाने में सबसे अग्रिम भूमिका निभाएगा
0: जी। नंदा जी, पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन कौन सी पहले की गई हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरी क्षेत्रों के बराबर अवसर मिल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मानना है?
1: देखिए पहले जो था एक शहर का जो बच्चा था और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था तो उनको एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स आता था कि भाई ये तो शहर का बच्चा है, ये
0: ग्रामीण
1: तो
0: क्षेत्रों में अवसरों की कमी थी।
1: बिल्कुल, अवसरों की भी कमी थी और वो सुविधाओं की भी कमी थी। आप देखिए आज मैं बात करूंगा, आज हर छोटे बच्चे बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है
0: जी,
1: आज हर गांव को फाइबर की एक लाइन है, आज हाई स्पीड इंटरनेट हर गांव में उपलब्ध है
0: जी,
1: 5G पहुंच चुका है, 6G आने वाला है। तो देखिए माय भारत नेशन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, इसने युवाओं को जो है वो मेरा युवा भारत का संवाद केंद्र बना दिया है
0: जी।
1: आज देखेंगे तो सरकार युवा सीधा जो है वो सरकार से संवाद कर सकता है।
0: जी
1: प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप, वॉलंटियरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
0: जी
1: देखिए इसमें जो है युवा जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां अपनी बात वो सीधा प्रधानमंत्री जी या अफसरों से बात कर सकता है, अपनी सोच को अग्रिम ले जा सकता है कि मैं कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी यहां मैं देख रहा था कि किस प्रकार से युवा जो है अभी आईएएस जो आईपीएस 1993 1994 के बर्थ वाले सीधा आईएएस इंडक्ट हो रहे हैं और वो ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो आपने बात करी अफसरों की,
0: जी
1: आज जो है एचएएस आईएएस अगर आप देखेंगे वास्तुकार जो आपके पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में आईपीएच क्षेत्र में, वो यही युवा जो है उनको पूरी जानकारी माय भारत ऐप के माध्यम से मिलती है और उसका पूरा सदुपयोग करते हुए वो सरकारी नौकरी भी लग रहा है, वो सेवाकार भी बन रहा है
0: जी।
1: और उनको जो है माय भारत ऐप के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर जवाबदेही है।
0: जी
1: ये ऐसी सरकार आई है जो जवाबदेही है। अगर उसके मन में कुछ प्रश्न है, उसकी सड़क खराब है, वो सड़क चाहता है, पानी नहीं है, जल से नल के अंतर्गत आना चाहता है, तो वो केवल मात्र उसके अंदर दो शब्द लिखता है और पूरी की पूरी केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार एक युवा को जवाबदेही के रूप में निकलती है। ये कितना बड़ा चेंज है
0: जी
1: आप देखिए। इसलिए ग्रामीण और शहर में जो युवा विकसित हो रहा है वो एक समान परिप्रेक्ष्य हो रहा है
0: जी
1: और इसी प्रकार से जो है ये वो देश आगे बढ़ता है जब ग्रामीण सेक्टर जो है वो शहरी सेक्टर की तरह जो है वो एक ही गति से आगे बढ़ने का कार्य करे।
0: जी नंदा जी, आप एक युवा नेता हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान में नशे की सबसे बड़ी समस्या देश व प्रदेश में देखने में आ रही है, जो एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है, और अब तक उठाए गए कदम इस चुनौती से निपटने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। आपका क्या मानना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या क्या कदम और उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि युवा इस नशे की

0: घंटे दो तीन की भूख मारी जाती है, पानी कम पीने का होता है, ज्यादा सोता है, अकेलेपन में बच्चा रहने का प्रयास करता है, ज्यादातर जो है वो अंधेरे में रहने का प्रयास करता है, उसको रोशनी से दिक्कत होती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पाती है, कभी कभी वो ऐसे कपड़े डालेगा गर्मी में भी जो पूरे ऊनी है कि वो किसी प्रकार के निशानों को छुपाने का प्रयास करे। तो अगर हमें अपने बच्चे या पड़ोसी या किसी हमारे मित्र का ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसकी मदद करने आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए इसके अंदर ये जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का बड़ा रोल है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है कई जगह जो है नकारात्मक प्रभाव से ही काम कर रहे हैं, पर उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सकारात्मक रूप में ही काम करे, पर रिहैब्स उनको डाला जाए, उनका संरक्षण किया जाए, जो सरकारी फंड है उसका भी यूज किया जाए कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका सरकार जो है उसका खर्चा वहन करे, और उसके उपरांत जो है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो उसका अलग प्रकार से संचालन करें। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रेस्ड एप्स आती है, अभी केंद्र मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने एप्स का भी एक प्रोग्राम किया, कॉल सेंटर नंबर्स भी करे, उन्होंने शॉर्टकट नंबर्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे है। तो किसी को अपनी आइडेंटिटी अगर बचाव में रखनी है कि वो चाहता है कि मैं इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना चाहता हूं पर मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे जान मान का खतरा है, मैं अपने परिवार को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, तो इस प्रकार के जो है वो नशे के खिलाफ जो है वो केंद्र में एप्स बनी है उसको प्रदेश में भी इंप्लीमेंट कीजिए, उसको खंड स्तर तक उसको भी जागरूक लाइए। हो सकता है मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पे एक तस्कर जो है वो बॉर्डर से जो है वो नशे को अंदर लाने का प्रयास करता है, पर मेरे पास कोई संसाधन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन भी हो सकता है कि उनके साथ मिला हो, पर मैं उसके अंदर जो है वो ऐप के अंदर जाके उनका एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकूं और मेरी आइडेंटिटी कंसील्ड रहे, तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर हम एक जागरूकता अभियान स्कूल स्कूल खंड खंड और हर जगह चलाए तो ये चीज आ ही नहीं सकती है क्योंकि आगे व्यक्ति ना करना सीख जाएगा, और इसके लिए एक अलग से क्लासेस के अंदर एक पीरियड का निर्माण होना चाहिए, कॉलेज के अंदर एक क्लास होना चाहिए, और इसके अंदर रैपिड फोर्सेस इसमें जो है बच्चों को और टीचर्स का एक समन्वय ग्रुप होना चाहिए जो इसके अंदर जागरूक भी करे, नजर भी रखे, निगरानी भी रखे और उसके ऊपर जो है एक जागरूकता फैला के रखे।
1: जी, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवाओं को खेलों की ओर अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेलो इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या ये भी नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करता है?
0: बिल्कुल, देखिए खेल जो है, खेल कहते हैं कि अगर किसी का मन और मस्तिष्क खाली हो तो वो उसके अंदर जो है कुछ चीज तो चली रही होगी, पर अगर वो बिजी रहता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था खेलो इंडिया के माध्यम से अभी जो है इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसके रूप के खेलो इंडिया के माध्यम से बनते हैं, तो उसमें जो है व्यक्ति जाए दिन के जो है 2 घंटे जो है वहां पे बैडमिंटन, टीटी, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, इस प्रकार की अनेकों स्पोर्ट्स आती है उसके साथ जुड़े, तो बच्चा जो है युवा जो है बिजी रहेगा और उसके अंदर जो है उसको लगता है कि भाई मेरे 2-3 घंटे मेरे अंदर अच्छी ऊर्जा आई है, तो वो उस ऊर्जा को खोना नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो एक सबसे सशक्त एक माध्यम है जिससे नशा जो है उसका एक उसके ऊपर प्रहार किया जा सकता है।
1: जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के युवा केंद्रित योजनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
0: मैंने स्किल इंडिया की बात करी, अनेकों चीजों की बात करी, पर आप देखेंगे कि रोबोटिक्स के ऊपर आज बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सामने आया है। चाहे आप AI की बात कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, इवन आप इंजीनियर, IIT और इस एक्टिविटीज की बात कीजिए, तो पूर्ण रूप से एक क्षेत्र खुला है और ऐसा कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहा है। पर आज के जमाने में AI और रोबोटिक्स में हमारा युवा जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशी का अवसर है। हमारे युवा ने देश को क्या विदेश को भी नेतृत्व दिया। आप देखेंगे किस प्रकार से आप चंद्रयान की बात करें या किसी और चीज की बात करें तो आज इसरो में भी जो है युवा का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में निकल के आता है और इसमें जो है युवा अग्रिम भूमिका में है, ये खुशी की बात है।
1: जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए युवा क्या कर सकते हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
0: केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक न्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके दिया है और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से एक युवा को अपनी फील्ड के लिए तैयार करती है। आज जो है 34 वर्ष बाद उस सिस्टम को बदला गया है, उसमें आप किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं, कभी आपका मन ना लगे तो उसको छोड़ करके दूसरा कोर्स परस्यू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर एजुकेशन सिर्फ किताबों से निकल

0: कर बाहर जो है एक प्रैक्टिकल रूप में जाती है, जहां वो उसके अंदर अपनी जो है वो एक अपने करियर को एक तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये नई जो है शिक्षा प्रणाली जो 2020 में शुरू करी गई, ये बहुत बड़ा एक माध्यम रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से युवा को पता है मैंने क्या करना है और मेरी फील्ड क्या होने वाली है, तो उसके लिए वो अपनी योजना को भी पकड़ सकता है, उस स्ट्रीम को भी पकड़ सकता है, उसी के विषय में अपने एग्जामिनेशंस को दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा
1: शिक्षा नीति 2020
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सबसे बड़ा माध्यम होगा देश को आगे ले जाने का।
1: जी नंदा जी, आपने बहुत ही सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विषय पर अपने विचार रखे और युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की इस चर्चा से हमारे श्रोता, खासकर युवा, बेहद लाभान्वित होंगे। आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का धन्यवाद।
1: श्रोताओं, निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों से देश का युवा लाभान्वित हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जहां देश के युवाओं को संबल प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभाई, वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान किया और साथ ही उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण मदद की। इसी तरह खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भी युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास गया है। युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में शिक्षा, कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों का विस्तार केवल युवाओं के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख श्री रितेश कपूर ने। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंटवार्ता, जिसका विषय था केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंटवार्ता में भाग लिया युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी ने और इनसे चर्चा कर रही थी समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई। यह कार्यक्रम आपने आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर केंद्रों पर भी सुना।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम

0: टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स. वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए.
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा.
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. एक रिपोर्ट.
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है. मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है. सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है. महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा

0: डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

श्रोतो, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता राज बब्बर पर फिल्माए कुछ गीत। अभिनेता राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को हुआ था। एक दिग्गज भारतीय अभिनेता और राजनेता हैं राज बब्बर। उन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और समानांतर रूप से वे एक सक्रिय राजनेता भी हैं। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राज बब्बर पर फिल्माया एक और गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अभिनेता राज बब्बर पर फिल्माए कुछ गीत। राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका परिवार विभाजन के बाद टुंडला में आकर बस गया था। राज बब्बर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आगरा से पूरी की और आगरा कॉलेज से स्नातक किया। वे प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 में बैच के पूर्व छात्र रहे। एनएसडी से निकलने के बाद वे मुंबई चले गए और अपने दमदार अभिनय से खास पहचान बनाई।
1: कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि

राज बब्बर ने चन परदेसी, मरही द दीवा और लौंग द लिशकारा जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करके पंजाबी सिनेमा में भी अपार सफलता हासिल की थी। उन्हें दूरदर्शन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत में राजा भरत की भूमिका और बहादुर शाह जफर में भी देखा गया था।

राज बब्बर का विवाह प्रख्यात प्रगतिशील उर्दू लेखक सज्जाद जहीर की पुत्री नादिरा जहीर से हुआ था। इस दंपत्ति के दो बच्चे हैं, एक पुत्र आर्य बब्बर और एक पुत्री जूही बब्बर। उनका विवाह अभिनेत्री स्मिता पाटिल से भी हुआ था। पुरस्कार की बात करें तो 1981 में फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 1984 में अगर तुम ना होते फिल्म के लिए, और फिल्म याराना में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1996 में उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता राज बब्बर पर फिल्माए कुछ गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं रंगे गजल।

जॉन एलिया साहब का एक शेर है, वो फिर भी न समझ सका मेरा लफ्ज़ों का की गहराई को, वो फिर भी न समझ सका मेरे लफ्ज़ों की गहराई को, मेरा हर वो लफ्ज़ मैंने हर वो लफ्ज़ कह दिया जिसका मतलब मोहब्बत था।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंगे गजल। इतनी कशिश तो हो निगाहे शौक में साकी, इतनी कशिश तो हो निगाहे शौक में साकी, इधर दिल में ख्याल आए उधर वो बेकरार हो जाए।

अदालत फिल्म से ली गई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी और गैर फिल्मी गज़लों का ये कार्यक्रम रंगे गज़ल। निकाह फिल्म से ली गई ये गज़ल अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में।

चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो आज के रंगे गजल कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी और गैर फिल्मी फिल्म गजलों पर आधारित कार्यक्रम रंगे गजल। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीत और लोकगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी और फौजा सेन की आवाज़ों में।

जोगिंदर सिंह की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा।

रानी रूपमती फिल्म से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। अब लीजिए सुनिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, हाल ही में बशीर बद्र मशहूर शायर का निधन हुआ था। उनकी कुछ लाइनें हैं कि लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ के फिर कोई वैसा नहीं मिला। कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगे मगर, कुछ लोग तो थोड़ी देर अच्छे लगे मगर, हम जिसके हो सके कोई ऐसा नहीं मिला, वो भी बहुत अकेला है शायद मेरी तरह, वो भी बहुत अकेला है शायद मेरी तरह, उसको भी कोई चाहने वाला नहीं मिला।

भले ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, भले ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर सुकून बहुत मिलता है तुम्हें सोचकर।

तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने

के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।